0: کہ جہاں اب تک تیری لہروں کے دوش پہ آواز کی اس خوبصورت رشتے سے منسلک ہم اور آپ رہتے ہیں. شو میں اس کا نام ہے بول کے لب آزاد ہیں تیرے. 972-501-9390 is the number for the studio. تمام لوگ سننے والوں کو السلام علیکم, نمسکار, ست سری اکال, ویری وارم ویلکم ٹو دس شو. شو بڑا فن اور مزیدار ہونے والا ہے جی, کیونکہ ہمارا پہلے سے موڈ ٹھیک نہیں تھا. کسی مہربان سے بات ہو رہی تھی تو وہ بھی کہہ رہے تھے جی کہ ڈاؤن لگ رہی ہے انرجی. میں نے کہا کوئی بات نہیں, شو میں جاتے ہی ٹھیک ہو جائے گی. تو آگے سے انہوں نے بھی کہا ہاں یہ صحیح ہے. تو لوگوں کو پتہ لگ گیا انرجی کو اپ, جب ڈاؤن ہو تو اپ کرنے کے لیے, ڈولڈرمز میں سے جی لو اسپرٹس میں نکلنے کے لیے, اسپرٹس کو اپ لفٹ کرنے کے لیے اور دوسروں کی اسپرٹ کو اپنے ساتھ ملا لینے کے لیے ہم کرتے ہیں یہ شو جس کا نام ہے بول کے لب آزاد ہیں تیرے. اینڈ دا شو مسٹ گو آن. 972-501-9390. مہربان قدردان بھائی جان تمام سائنسدان جو زندگی کی سائنس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کو آرٹ بنانے کی طرف گامزن ہے, یعنی کہ چل رہے ہیں اس طرف, تو ان تمام مہربانوں کے ساتھ یہ شو آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں جی. آئیے اور پہلے آئیے اور پہلے پائیے. کون ہے ہمارے ساتھ ویڈیو آزاد یوں دیا؟
1: السلام علیکم آزاد جی.
0: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. پائیے پہ آئے ہیں آپ
1: جی, کیسے ہیں آپ؟
0: بالکل ٹھیک ٹھاک. حکم.
1: اچھا تو
0: میں کیسے ایکسائٹمنٹ فیک ٹھیک کر رہا ہوں؟
1: جی جی جی, آپ تو آپ سے بہتر کون کر سکتا ہے بھائی, ماشاء اللہ ہالی ووڈ کے ایکٹر ہیں.
0: فیک ایکسائٹمنٹ جو ہے نا, کیونکہ لائف میں یہ سیکھنا ہے آپ نے کہ فیک اٹ انٹل یو میک اٹ. تو اب جب میں فیک کروں گا ہلکا ہلکا, تھوڑا سا انرجی کو اٹھا کے دماغ کو میسج پہنچے گا جی کہ انرجائز ہونا ہے, تھوڑا اپ لفٹ کرنا ہے, تھوڑا سا ماحول بنانے کی کوشش کرنا ہے, تو ساتھ ساتھ دنیا بھی شامل ہو جائے گی اور ماحول بن جائے گا.
1: جی بالکل صحیح بات ہے. لاسٹ شو واز ایبسولوٹلی امیزنگ آزاد جی, اور آپ کے اتنے اچھے اچھے سب کے پوائنٹس آتے ہیں ایز آلویز. شہناز جی, ہماری سجیلا جی, اور سارے جو لوگ ہوتے ہیں آپ کے, ہیرا سنگھ جی, مطلب باقی بہت بہت اچھا لگا لاسٹ والا شو. اور منٹ آف دا ڈے آپ کے اتنے سارے بنے نا کلپس اس دن تو, اور گریٹیٹیوڈ والا خاص طور پہ جو پوائنٹ تھا نا آزاد جی, جو آپ نے جس طرح سے ایکسپلین کیا تھا کہ جب بھی آپ کو کوئی دعا کرنی ہوتی ہے تو آپ دعائیں حاجات پہلے اپنی کس طرح سے کرتے ہیں, سارے شکرانے جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور بلیسنگز ہیں آپ ادا کرتے ہیں. یقین کریں ایسے گوز بم سے ہو رہے تھے, رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے آپ جس طرح سے بتا رہے تھے, تو اتنی بلیسنگز ہیں. اور پھر اس کے بعد آپ جو ہیں اپنی جو بھی دعا ہوتی ہے, ہم لوگ تو آزاد جی ایسی دیکھیں چیزیں کتنی گریٹیٹیوڈ کی ہوتی ہیں, مطلب یہ چیزیں کتنی امپورٹنٹ ہوتی ہیں کہ آپ پوری اپنی پہلے بلیسنگز کو کاؤنٹ کرتے ہیں, اپنا شو کرتے ہیں شکرانہ, اس کے بعد آپ جو ہے دعا کرتے ہیں. اور ہم لوگ تو مطلب کیسا ہوتا ہے بس ڈائریکٹلی اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں لوگ, اور مطلب باقی دیٹ واز سو امیزنگ.
0: کنیکشن بنائے بغیر نا, کئی دفعہ میں نیت کرتا ہوں نماز کے, آپس کی باتیں اس لیے بتا رہا ہوں اپنے لوگوں کو, تو میں کنیکٹڈ ہی نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, تو توڑنی پڑ جاتی ہے, کیونکہ کنیکشن بڑا امپورٹنٹ ہے. ایکٹنگ میں ہمیں جو چیز سکھائی جاتی تھی نا, آپ اگر کنیکٹڈ, آپ ایک لائن بول رہے ہیں اور آپ کی آنکھوں سے اور آپ کی باڈی لینگویج سے لگ ہی نہیں رہا کہ آپ سچ بول رہے ہیں اور یہ جھوٹ نہیں ہے اور ایسا ہی ہے, تو کسی کے دل پہ کوئی اثر نہیں ہونا, وہ بہت فیک سا ہوتا ہے, پھوگا سا ہوتا ہے. جیسے آپ مالٹا خریدے نا بڑا زبردست قسم کا, اوپر سے جو موٹا موٹا سا ہوتا ہے لوگ اٹھا لیتے ہیں, اندر سے وہ پھوگا نکل آتا ہے تو کتنا منہ بنتا ہے. دوسری طرف چھوٹا سا مالٹ جس کو آپ اسکن کو ہاتھ لگاتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے اس میں سے جوس جو ہے وہ اسپاؤٹ کرنے, اوز آؤٹ کرنے لگا ہے, ٹھیک ہے. اور لال بلڈ مالٹا نہیں ہوتا جسے کہتے ہیں رتے لال بلڈ مالٹے, کیونکہ ہم تو ہری پور کے نا خان پور ساتھ ہیں ہمارے, تو ان کے مالٹے کاغذی جس کو کہتے ہیں مالٹے, کیونکہ ان کا جو اوپر چھلکا ہے وہ بہت پتلا سا ہوتا ہے, تو کاغذی مالٹے کی طرح آپ اس کو ذرا ٹچ بھی کرتے ہیں, پرک بھی کریں گے تو اس میں سے ایسے جوس نکلے گا. تو یہ والا چاہیے کہ پھوگا پھوگا چاہیے, تو باقی جو رشتے بھی پھوگے ہیں ٹھیک, پلپ اس کا سوکھا ہوا ہے لیکن اوپر سے وہ بڑا ٹھیک لگ رہا ہے, لوگ بھی کہتے ہیں واہ بڑا تگڑا ہوا ہوا ہے, کٹا ہوا ہوا جیسے بندہ نہیں ہوتا اندر سے پھوگا ہوتا ہے بالکل ویسا ہی. تو زندگی بھی اگر اس طرح بھوگا بھوگا کھیلنا ہے تو پھر مرضی ہے آپ کی, لیکن اگر آپ نے اس میں سے ایک چیز جو کہ اصل فیل کرتے ہیں جب آپ جوس نکلی ہوئی جو زندگی ہوتی ہے ناپ فیل جب آپ کرتے ہیں کسی چیز کو, تو جیسے ایک بندہ زندہ ہوتا ہے, ایک ایسے میرلی الائیو سا ایک بندہ ہوتا ہے آوازار زندگی سے, بس وہ زندہ ہے, اور دوسرا جو ہے وہ فیلنگ الائیو جو کہ اس کو فیل کر رہا ہے کہ بھائی میں زندہ ہوں, वो कुछ बोलता है, कुछ कहता है, कुछ करता है तो पता चलता है, फीलिंग आती है उसके अंदर से। तो ये बेसिकली अगर मिसिंग है तो इबादत में भी कभी कभी ये सारी चीज़ें ना, आपका ध्यान किसी और तरफ होता है। वो एक लेडी ने बड़ा अच्छा सवाल पूछा था आज, मुझे अगर याद आ गया, उनको मैंने कहा था या फिर मैं कहीं बाहर कहीं जाता हूँ तो अच्छी बात ही होती है कि लोग मुझे मिलते हैं तो कोई ना कोई उनका क्वेश्चन होता है जो वैसे वो शो में नहीं कर पाते, तो वो मुझसे डायरेक्ट कह देते हैं। फिर मैंने कहता हूँ चले मैं शो में इसके बारे में बात कर लूँगा, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। और नमाज से रिलेटेड उनका एक सवाल था। जी
1: जी बिल्कुल। और रजा जी इसीलिए देखें मेरा एक पॉइंट है, लेकिन उससे पहले मैं ये कहूँगी कि आपके शो में जब आप अपनी जिंदगी, आपने जो जी है, जो आप फील करते हैं, महसूस करते हैं, और जब आप बोलते हैं तो जो हर दिल की आवाज और लोगों के डायरेक्ट वो जाके लगती है उनके दिलों को। इतने सारे हमारे वैसे तो लोग हैं आजादी आजकल जो मीडिया है, लेकिन उनकी बातों का इतना असर नहीं होता, लेकिन जब आप बोलते हैं ना तो आप उस पर पूरा आपका एक ऑथेंटिक तरीके से आप बोलते हैं तो वो दिलों तक डायरेक्ट पहुंचता है। हर इंसान आपका शो सुन के कहता है कि ये तो बिल्कुल मेरी बात कर रहे हैं, और उनके दिल तक पहुंचती है वो बातें, तो इसीलिए कि उसमें सच्चाई है। आपकी कोई भी बात, जब आपका प्लेटफॉर्म ऐसा है गाजी कि जो लोग भी आते हैं ना अपनी आराम से, इवन दो कि वो बहुत शुरू में इतने डर भी रहे होते हैं, लेकिन आप उनको कंफर्टेबल करते हैं और वो फिर अपनी बातें करते हैं, तो ये हमारी जिंदगी
0: असल में ये है, लोगों के अंदर जो डर भी है ना वो भी हमारा पैदा किया हुआ है, ये हमारी सोसाइटी का पैदा किया हुआ है। पता नहीं क्या हो जाएगा, पता नहीं क्या कह देंगे, पता नहीं लोग क्या सोचेंगे। अरे भाई लोगों क्या सोचेंगे, इसने हमारी जिंदगियां खा गए हैं, 200-400 साल से हम यही सोच रहे हैं लोग क्या सोचेंगे। बाद में हमें पता चला लोग तो घामड़ होते हैं, लोग तो एक छोटा सा सिस्टम नहीं बना सकते, वो अपने घर का सिस्टम, अपने घर का बजट नहीं बना सकते, वो अपना रास्ता मुतय्यन नहीं कर सकते, वो अपने गिफ्ट्स को नहीं जानते, वो कम्युनिकेशन, बेसिक कम्युनिकेशन उनको नहीं आती, वो किसी को अपनी बात पे कन्विंस नहीं कर सकते, लंबा वो किसी के साथ चल नहीं सकते। ये लोग क्या करते हैं उसकी मुझे इतनी टेंशन है, मैं तुक नहीं बन रही थी। हमने भी 30 साल उनके डिप्रेशन में और टेंशन में आके देखा, फिर मैंने देखा ये हैं लोग, ये लोग, इनकी तरह बनना चाहता था मैं, इनकी तरह हम बनना चाहते हैं, इनको हम इम्प्रेस करना चाहते हैं, इनको हम खुश करना चाहते हैं, इनको तो खुदा नहीं खुश कर सका, फरिश्ते नहीं खुश कर सके, इनको तो ज़िंदगी की हर ख्वाहिश जो इन्हें चाहिए थी, जो डिज़र्व भी नहीं करते, वो भी मिल जाए तो उससे खुश नहीं होते, और मैं इनके पीछे पड़ा हूँ, मैं कितना बेवकूफ़ हूँ। वो जितने गए गुजरे हैं हम उनसे ज़्यादा गए गुजरे हैं। इसीलिए जिस किस्म का लीडर होता है ना उस किस्म के फॉलोअर्स होते हैं, तो जितना वो गया गुजरा होता है उसके फॉलोअर्स भी वैसे ही होते हैं, और जितना वो कैरेक्टर वाला होता है, इंटेग्रिटी वाला होता है, चीज़ों के ऊपर स्टैंड लेने वाला होता है, उसके साथ चलने वाले भी वैसे ही होते हैं, और जो नहीं होते वो अलहदा हो जाते हैं बहुत जल्द, घोड़े और गधे।
1: जी
0: तो ये सिंपल है, एक ट्रूथ को एक्सेप्ट ना करें, कोई तुक नहीं बन रही है इन सारे काम की। मैंने क्या कहा था, मैं वो लाइन क्या थी आजाद थॉट्स में से, आई एम इन द बिजनेस ऑफ मेकिंग सेंस। जब आप तुक बना देंगे किसी बात की तो बेतुके लोग, बेतुकी बातें, बेतुके रिश्ते, वो सब उनका तुक्का मिस हो जाएगा, ठीक है। और जब तुक्का ही मिस हो जाएगा तो छल्ली के अंदर से तुक्का आप निकाल लेंगे तो दाने कहाँ हैं, ऊपर लगेंगे कैसे वो
1: जी।
0: तुक्के का टाइम खत्म होता है जब उसके ऊपर छल्ली आपने भून लिया, अब आप उसके दाने निकाल रहे हैं या सूख गए हैं तो उसको आप गंदम निकाल रहे हैं या कौन उसका निकाल रहे हैं या जो भी छल्ली होती है किसी भी किस्म की, लेकिन उससे पहले अगर छल्ली है ही नहीं नीचे तो वो उगेंगे किस चीज़ के ऊपर। तो किसी भी चीज़ की तुक बनाने का ये याद रखें कि इसका तुक्का होना बहुत ज़रूरी है, इसके ऊपर जो चीज़ लगेगी वो किस चीज़ पे लगेगी, कानून में से एक जगह मिसिंग है। तो जब एक तुक, रिश्ते की एक तुक मिसिंग है, मतलब एक चीज़ मैंने हासिल कर ली उसे मुझे खुशी नहीं आ रही, मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे सुकून नहीं आ रहा, मुझे मज़ा नहीं आ रहा, मुझे एहसास नहीं मेरे अंदर पैदा हो रहा, तो वो सब फालतू है। कुछ दिन के बाद जब ये फालतू फालतू चीज़ें करते हुए, इसीलिए तो लोग अपनी ज़िंदगी से तंग हैं, इसलिए तो आप फिर क्या होता है, कोई दोस्त नहीं होता, कोई गमखार नहीं होता, कोई शेयर आप किसी के साथ कुछ नहीं कर सकते, हर एक से डरते रहते हैं, इसको पता लग गया तो क्या होगा, उसको पता लग गया तो क्या होगा, इन तमाम चीज़ों की वजह से ये मसाइल पैदा होते हैं और ये हम खुद मसाइल पैदा करते हैं। तो इससे बाहर निकलेंगे जब ज़िंदगी, जब जिसने खुशी देखी नहीं, वो मरी हुई चीज़ें जो उसके सामने लोग डाल जाते हैं उसको वो खुशी समझते हैं, तो वो उसको लगता है यही खुशी थी, लेकिन जब वो खुशी देख लेता है, जब वो सच देख लेता है, जब उसकी एग्जिलरेटिंग किस्म की जो फीलिंग होती है, ऑसम किस्म की जो फीलिंग होती है, जब वो देख लेता है तो उसके बाद वो बार बार, ये नशा करने वाले नशा क्यों करते हैं, इनको जब हिट लगती है, ये डोपामिन के चौथे, सेरोटोनिन के चौथे छठे लेवल पर जब इनको एक हिट लगती है तो उसके बाद वो बार बार उसी हिट को पाने के लिए ये नशा करते हैं। कुछ अरसे के बाद इम्यूनिटी हो जाती है पैदा, फिर ये और ज़्यादा डबल ट्रिपल करना शुरू कर देते हैं क्योंकि उनको वो हिट चाहिए। बिल्कुल
1: जी।
0: वो बुराई की हिट है, इसी तरह अच्छाई की भी हिट होती है। आपको अगर हिट लग गई, इंट्रेंसिक रिवॉर्ड आपको अंदर से मिल गया, एक अच्छा दोस्त आपने दोस्ती फील कर ली, एक अच्छा दोस्त आपको मिल गया, कहीं आपको स्ट्रेंथ किसी जगह पे फील होगी अपनी, अगर कोई कैरेक्टर पे या इंटेग्रिटी पे या किसी स्टैंड के ऊपर एक दफ़ा वो आपने फीलिंग देख ली, तो चीज़ें खुद ब खुद बेहतर होती चली जाएंगी।
1: बिल्कुल सही बात है, आपने बिल्कुल सही कहा। जैसे हम अगर हम फर्स्ट क्लास में सफर करें, जिनको पता नहीं होता, फिर उसके बाद इकोनॉमी क्लास में नहीं सफर कर सकते। तो जो आप जैसे कहते हैं ना, जो लोग छोटी बातें करते हैं उन्होंने अपनी जिंदगी जी ही नहीं होती, तो वो इसी तरह की बातें कर रहे होते हैं। जो लोग जी चुके होते हैं उनको उनको लाइफ का पता होता है। तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और एक और पॉइंट मेरा ये था राजी, कि आजकल सर्दियां हैं, वेकेशन है, हॉलीडेज हैं, तो हर चीज ना बंद लग रही है, लोग आ जा भी रहे हैं, लेकिन हर चीज जो है ना डल सी लग रही है। लोग खास आ जा नहीं रहे कहीं बाहर, सब घर में रहना पसंद कर रहे हैं, काम नहीं करना चाहते। तो ऐसी सिचुएशन में जो खास ये सीजन आता है हमारा, इसमें हमें क्या करना चाहिए?
0: सर्दी में हर चीज सुकड़ जाती है ना, तो इस तरह बंदे भी सुकड़ जाते हैं, रिश्ते भी सुकड़ जाते हैं, और बहुत सारी चीज, और स्पेशली ये जो हॉलीडे सीजन शुरू हो रहा है इसकी वजह से काफी ग्लू, और ऊपर से बारिश और अंधेरा जल्दी हो जाना, एक ग्लूमी ग्लूमी सा एक माहौल है। ठीक है जी, और इसको कैसे, अब इसको फन कैसे बनाना है, इसके लिए मैं ज़रूर इसके बारे में बात करता हूँ। नाइस ऑफ यू मैम, थैंक यू वेरी मच फॉर किक स्टार्टिंग द शो। हमारे पास कोई मेहरबान हैं जी, बड़े दूर से आए हैं, उनसे करते हैं बात। रेडियो आज़ाद, यू ऑन द एयर एंड ऑन व्हाट्सएप।
2: आज़ाद जी, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम जी,
0: क्या हाल है सर? ठीक ठाक हो?
2: बिल्कुल बढ़िया सर जी।
0: आप आए या ना आए, देखें आपकी हाजिरी लोग लगा जाते हैं आपका नाम लेके।
2: मैं सर कभी कभी तो यकीन ही नहीं होता कि मैं जिस हिसाब से, मुझे लगता है मैं, क्योंकि वही बात आ जाती है, इतना कुछ कहने को है कि मैं खुद भी कई बार सेंस नहीं बना सकता, मुझे और लोगों को वो बातें मेरी अच्छी लग जाती हैं।
0: इसका मतलब है कि वो जो है ना कनेक्टेड हैं, रेलेवेंट बातें हैं सारी, जो भी आप कहना चाहते हैं, और भी हजारों लाखों करोड़ों लोग हैं इस दुनिया में, वो उसमें से गुजरे हैं, उसके बारे में सोचते हैं, तो आपको एक ऐसी जगह, एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जिसमें से आपको रिकग्निशन एक्चुअली उन थॉट्स की होती है जो आप पेश करते हैं, जो आप बातें करते हैं, उससे लोग जब रिलेट करते हैं तो साथ साथ आपको आपकी एक्चुअली थॉट्स की रिकग्निशन है। ये हम बंदे पे चले जाते हैं कि बंदे की बड़ी तारीफ हुई या बंदे के बारे में लोगों ने ऐसा कुछ कहा, लेकिन जो भी कॉन्ट्रीब्यूट करेगा सिस्टम के अंदर, कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, गिविंग होगी, तो आपको रेसिप्रोकेशन होगी, बस इतनी सी बात। सारा काम देखें रब कब से दे रहा है, सारी दुनिया घूम फिर के रब तक आ जाती है, हर इल्म हर नॉलेज आखिर में रब के पास चला जाता है घूम फिर के। कुदरती अमर है, ये कुदरती ऐसा होता है, ये साइंस कहती है जी रूह क्या चीज़ है, फिर घूम फिर के नेचर तक पहुंच जाते हैं, कोई एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट की बात होती है, वो घूम फिर के जी नेचर में ऐसे है, वहाँ पे जा पहुंच जाते हैं, तो घूम फिर के चीज़ें वहीं वापस चली जाती हैं। तो गिविंग करने से ही, चाहे वो आपकी थॉट्स में गिविंग है, चाहे वो आपके एहसास की गिविंग है, चाहे वो कनेक्शन है लोगों के साथ, कुछ भी है, तो बस जब आप वो करेंगे तो आपको रिजल्ट्स उसके खुद ब खुद मिलना शुरू हो जाते हैं। और अपने आप को हम वैसे ही छोटा समझते रहते हैं क्योंकि आपने अपने आप को बाहर निकाला ही नहीं ना, आप दुनिया के बाजार में आए ही नहीं हैं, तो कीमत कैसे पता चलेगी? हीरा बाहर ही नहीं निकला, वो छुप के बैठा हुआ है, वो कह रहे जी मैं कोयले की कान में पैदा हूँ, तो वो अगर कोयले की कान में तो करोड़ों कोयले निकले हैं तो उसमें से एक हीरा निकलता है, तो अगर वो बाहर निकला है तो थोड़ी बहुत स्टर तो क्रिएट होगी ना।
2: वही सर जी, मेरे पास अभी स्टूडेंट्स अभी क्लास चल रही है, लास्ट टाइम भी थे, तो वो मुझसे बातें करते हैं और मुझे कहते हैं कि आपसे बातें करके अच्छा लगता है, और मैं सोच रहा था मुझसे एक एज डिफरेंस है, इनको क्यों अच्छा लग रहा है, मैं उस बात को ऑब्जर्व करने की कोशिश करता हूँ, फिर मैं जितना मेरे से होता है मैं इनको बताता हूँ, लाइक जो मैंने एक्सपीरियंस किया है मैं विद फुल ऑनेस्टी उनको बता देता हूँ, आई थिंक मे बी उनको ये बात अच्छी लग जाती है
0: जी। ऑनेस्टी जो है ना, ट्रूथफुलनेस, ऑनेस्टी एंड सिंप्लिसिटी, ये तीन चीजें याद रखिएगा, ट्रूथफुलनेस, ऑनेस्टी एंड सिंप्लिसिटी। जिस जो इंसान भी जितना भी नेचर से कनेक्टेड होगा, ये सारी चीज़ें उसके दिल पे असर करेंगी। और जो बंदा जितना भी शैतान के चक्रों में होगा और उसने अपना दिल काला कर लिया या उसने अपनी सोचें जो है ना वो करप्ट कर ली हैं सॉफ्टवेयर, उसका इन तीनों चीज़ों से उसकी जान जाती है। सच से उसकी जान जाएगी, ऑनेस्ट बंदे से, ऑनेस्ट फीडबैक से उसकी जान जाएगी, ठीक है। और तीसरा, सिंप्लिसिटी के बजाय वो हर चीज़ को कॉम्प्लिकेटेड, टेक्निकल और पता नहीं क्या क्या करेगा, मुश्किल से मुश्किल करता जाएगा, उसकी जान जाएगी, क्योंकि डेविल इज़ इन द डिटेल्स। तो ये जब भी आप ये काम करेंगे, और दूसरी बात, एक चीज़ जो मुझे आपको ज़रूर कहनी है और आपकी तरह के जितने भी लोग हैं उनको कहनी है, क्योंकि मैं खुद ऐसा था, मुझे एक ज़माने में एक आदमी मिला, बुज़ुर्ग थे, उस आदमी ने सारी चीज़ें उसकी उल्टी थी, जो कुछ उसने कहा वो उल्टा होता था, सब कुछ उल्टा था, लेकिन उसने एक ऐसी बात की, हर आदमी की एक उनकी ऐसी बात थी जो मेरी ज़िंदगी में परमानेंट, मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन गई, और जो मुझे वैसे कभी समझ नहीं आती थी, मुझे उस बंदे की बात से वो बात समझ आ गई, ठीक है। इससे हमने सीखा ये कि एक आदमी 100 गलत बातें आपसे कहे और वो कभी भी वो काम ना करे, लेकिन उसकी एक दी हुई बात जो है, आज तक जब भी मैं उनके बारे में सोचता हूँ या मेरे कुछ बात उनके बारे में होती है, तो मैं उनको इस एक अच्छी बात का क्रेडिट ज़रूर देता हूँ। उन्होंने मुझे एक दफ़ा कहा था, कोई बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा, बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, आपका जिक्र करते हैं, लोग आपसे बड़ा प्यार करते हैं, आपकी बड़ी इज्जत करते हैं, और उनके ये भी अल्फाज थे कि लोग आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, अपने अपने तरीके से करते हैं लेकिन बहुत मोहब्बत करते हैं। तो मैंने उनको बोला था कि मुझे ये मोहब्बतें, ये इज्जतें, ये लोगों की बातें जो है ना बोझ लगती हैं, क्योंकि जब लोग इनलाइटन्ड नहीं होते हैं, जब लोगों को बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल होते हैं या उनकी एक कंडीशनिंग कर दी गई है, उसी तरह की मोहब्बत करना चाहते हैं वो, इसी तरह की इज्जत और उसी तरह के पीछे भागना चाहते हैं आपके, तो आप एक ना घबरा भी जाते हैं, इरिटेट भी हो जाते हैं एक वक्त के बाद, फिर आप बहुत सख्त भी हो जाते हैं। तो उन्होंने मुझको एक बात बताई थी, और मैंने कहा था ये अभी से नहीं, ये मेरे साथ बचपन से हो रहा है, मुझे लोग बहुत तंग कर देते हैं, मैं जान छुड़ा के फिर लोगों से भागता रहता हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि आपके अंदर रब ने एक फ़र्ज़ करो एक चीज़ रखी है कि लोग आपसे प्यार करेंगे, ये एक हकीकत है, अगर आप जितना भी इससे भागेंगे आप अपनी ज़िंदगी मुश्किल करेंगे, आप खामखा इरिटेट होंगे, आप वैसे लोगों से दूर होते रहेंगे, लेकिन ये हकीकत बदलेगी नहीं। कुछ लोगों से लोग कुछ उनकी इज्जत करते हैं, कुछ लोग उनसे प्यार करेंगे, कुछ लोग उनकी बात सुनेंगे, बस रब की तरफ से हर बंदे का एक अपना गिफ्ट है। तो आप बजाय इसको डिनाई करने के लिए इसको एक्सेप्ट कर लें, एम्ब्रेस कर लें इस फैक्ट को, और उसके बाद लोगों को करने दें जो वो करते हैं, और जो गलत कर रहा है वो आप सुन लें, समझ लें, लेकिन ज़रूरी तो नहीं आप उसको रेसिप्रोकेट भी करें, चुप कर जाएँ या अवॉइड कर लें, लेकिन ये चीज़ें ऐसे ही रहेंगी, आपके ना मानने से कुछ बदलेगा नहीं, ये ऐसे ही होगा। तो उस दिन के बाद से मैंने अपनी ज़ात में, अपने जहन में, मैंने हर बंदे को जिस तरह के भी लोग एक्सप्रेस करते हैं, अल्फाज में कोई मोहब्बत एक्सप्रेस करते हैं, कोई एक्शंस में करते हैं, कोई उनका अपना एक तरीक़ेकार है उसमें करते हैं, मैं जितना कर सकता हूँ रेसिप्रोकेशन उतनी कर देता हूँ, जितनी ऑनेस्टली हो सकती है मुझसे या जिस तरह की हो सकती है। बाकी जो मेरी नेचर में नहीं है और जो मेरे मैं जिससे तंग होता हूँ, इरिटेट होता हूँ, मैं ना उन चीज़ों का जवाब देता हूँ, ना उन चीज़ों की तरफ जाता हूँ, ना कुछ और, तो उससे ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाती है। तो इस तरह एक तो हम्बलिंग भी है ये चीज़ कि आपने एक चीज़ जो रियलिटी है उसको एक्सेप्ट कर लिया, और दूसरा बार बार कि यार मुझ में ऐसा क्या है या इसमें ऐसा क्या है या उनमें ऐसा क्या है या मुझ में तो कुछ भी नहीं है, इस डिबेट से आप बाहर निकल जाते हैं। समझ आई?
2: जी सर, हो सकता है। मैंने पिछली जी
0: ये कर पाएंगे आप, हो सकता है।
2: मैं इसी रिलेटेड बात करना चाह रहा था, इससे रिलेटेड बात करना चाह रहा था। पिछली दफा आपने जैसे समझाया था कि अगर आप 15 सेकंड वो गैप दे दें, तो मैंने वो ट्राई किया और मैंने महसूस किया कि वो 15 सेकंड मुंह बंद रखने से बहुत सी आमतों से बंदा बच जाता है। एक तो आपको वो जो फटाफट आपको रिएक्शन देने की पड़ी होती है, आप उससे बच जाते हैं, और आप उससे बच जाते हैं जो कुछ आप नहीं कहना चाहते, और इन द मोमेंट यू से समथिंग एंड देन यू रिग्रेट, उससे बच गया मैं। और इससे मैंने पाया कि मेरे अंदर सुकून बहुत है। और दूसरी बात मैंने ऑब्जर्व करी आजाद जी, जब पिछली दफा मैंने आपको बताया था कि बेटे के नाखून से, पैर पांव के नाखून से खून बह रहा था, वो 2 दिन बाद रात को 2 बजे बेड से गिर गया। तो हम सुबह 3 बजे इमरजेंसी में बैठे, पहले तो मैंने वही वैसे ही रिएक्ट किया जो मैंने पिछली दफा किया, मैंने अपने आप को पीटा, फिर मैंने क्यों मैं कर रहा हूँ, लेट्स जस्ट स्टॉप, असेस द सिचुएशन, और जब ये ठीक हो जाएगा तब मैं अपने आप से बैठ के बात करूंगा, अभी मैं क्या कर सकता था।
0: उस सिचुएशन में बीटिंग योरसेल्फ अप would have been the right thing to do, अगर आपने लात मार के उसको गिराया हो, ऐसा तो नहीं किया ना आपने?
2: नहीं,
0: तो जब आपने नहीं गिराया, यही तो मैं कह रहा हूँ ना, कई चीज़ें जो कि होती हैं, ओकेजनली होती हैं, एक्सीडेंटली होती हैं, इंसिडेंटली हो जाती हैं, उसमें अगर इस तरह का रिएक्शन देंगे तो एक तो वो चीज़ हो गई, वो फ़र्ज़ करें आपकी बेगम साहिबा, एक तो एक बच्चे को कुछ हो गया, तकलीफ होगी, वो उनको स्ट्रेस है, फिर आप जिस तरह रिएक्ट कर रहे हैं उससे और ओवरवेलमिंग काम हो जाता है, ठीक है?
2: Exactly.
0: और वो हेल्प करने के बजाय एक्चुअली कोई आप हेल्प नहीं कर रहे, बल्कि और मुसीबत डाल रहे हैं, अगले बंदे को समझ नहीं आती, फिर वो यू नो पौंतर सा जाता है।
2: बिल्कुल सर, ऐसे होता है।
0: हाँ, तो इससे आपने दो तीन चीजें अपने ऊपर काम भी हो गया। अच्छा, एक और बात मैं आपको मजे की बताऊं, जब आदमी को गुस्सा कब कोई ऐसी चीज होती है ना, मेरे साथ भी होता है, तो उस वक्त ना हर चीज बुरी लग रही होती है, अगला बंदा अगर आगे से, स्पेशली अगर वो बोला आगे से, फिर तो बहुत सख्त काम हो जाता है, ठीक है, कि यानी गलती नहीं मान रहे और यू नो और बहुत सारे मसाइल होते हैं, और अगर वो देख भी नहीं रहा और ध्यान भी नहीं दे रहा, या उसने उसको जो आपको एडिक्वेट एक्शन रिएक्शन चाहिए जिसके वजह से आप काम डाउन हो जाए, और वो कमबख्त सब कुछ करता है सिवाय वो रिएक्शन देने के, ठीक है, वो हर वो गलत काम करता है, आगे से एक्सप्लेनेशन देते हैं, लॉजिक देते हैं, डर जाते हैं, पता नहीं कहाँ पर होता, उल्टा सीधा सब करते हैं, वो एक काम नहीं करते कि चुप रहें और आपकी तरफ कम से कम ध्यान दें कि कोई बात हुई है, और शर्मिंदगी होनी चाहिए, लेकिन ये रिएक्शन नहीं आएगा, तो जब तक ये नहीं आता ना, आपका जो है ना बॉनेट गर्म होता जाता है आस्ते आस्ते, ठीक है? तो इसका एक और मैंने तरीका ये निकाला जिससे लोग घबरा भी जाते हैं, डर भी, जैसे ही कोई ऐसी बात हो जो कि बिल्कुल गैसकेट उड़ाने वाली हो ना, रादर देन उस वक्त अपने पे काम करना या सोचना या कुछ और करना, एकदम सिस्टम को शट ऑफ हो जाना चाहिए, और आपको उस जगह को छोड़ देना चाहिए, कमरे में है तो बाहर चले जाए, बाहर है तो घर से बाहर चले जाए, ठीक है, कुछ भी थोड़ी देर के लिए बाहर निकल के, डिसकनेक्ट, डिसएंगेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वही इन्वायरमेंट वही चीज़ रहेंगे तो, और थोड़ी देर के बाद ना वो जब इम्पल्स आपके काबू में आ जाएगी, तो उसके बाद फिर वापस आके जो भी कुछ, क्योंकि बाद में सॉरी करना और यू नो इरिटेट होना, गला ख़राब करना, ये सब गला भी ख़राब हो गया, आप इरिटेट भी हुए, आपने जो काम पहले किया था उस पर भी सारी मट्टी फिर गई, फिर आप सॉरी भी करेंगे या कुछ भी होगा या नहीं करेंगे या शर्मिंदा शर्मिंदा से रहेंगे, इन सारी एनर्जी को बचाने के लिए एक ही बात है, डिसएंगेज कर लें, और थोड़ी देर बाद वो बेटर सेंस खुद ब खुद जो है ना वो प्रिवेल कर जाएगी, क्योंकि नॉर्मली तो आप ऐसे नहीं हैं, तो वो जब चीज़ ने रिएक्ट किया तो वहाँ आपने कुछ करना है, ये मुझको समझ, ये मैं अपनी एलर्जीज़ के साथ भी ऐसे ही करता हूँ, जो मुझे होती हैं, जिन जिन चीज़ों में फ़ौरन, जो भी मुझे अब तरीका आ गया इतने सालों में, 20 साल में 30 साल तक एलर्जी से डील करने के बाद अगर मैं अपनी एलर्जीज़ और हर चीज़ समझ गया हूँ, तो ये जुल्म नहीं है कि मैं अपने जो मेरे सिस्टम को मैल फंक्शन या सिस्टम में जो रिएक्शन होता है मैं उसको कंट्रोल कर लूँ, उसको भी समझ जाऊँ मैं कम अज़ कम, और उसके लिए भी मुझे जो दवा और दारू करना है वो भी मैं कर दूँ, ये भी मैं ही करूंगा। अगर आप ये कि अगला बंदा ऐसे कर ले, तो वो कभी कभी एक्सीडेंटली ऐसा होगा कि आपको कोई ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनका एक्चुअली रिएक्शन एक ही होगा और वो पॉजिटिव होगा और वो कुदरती आपसे मैच कर जाएगा, वरना ऐसा होता नहीं। तो दूसरों पे अगर हम अपने ट्रिगर्स दूसरों पे रखेंगे वो तो होगा नहीं। तो यहाँ पे आपने क्या किया, अपना कंट्रोल अपने पास ले आया, और जब कंट्रोल आपके पास आ गया देन यू कैन मेक चेंजेस।
2: मैं कब तक सॉरी बोलता रहूंगा? व्हाट टाइम आई कीप अपोलोजाइजिंग? देयर बी टाइम एंड प्लेस। आई नीड टू वर्क ऑन माय सेल्फ एंड मोर आई ऑब्जर्व माय सेल्फ मोर आई लर्न अबाउट माय सेल्फ एंड दैट्स व्हाट आई कीप रिलेइंग आउट टू पीपल।
0: चलो मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, एक और एग्जांपल। फर्ज करें कोई बंदा है, वो बार बार वही गलती कर रहा है जो आप अभी कर रहे हैं, अपने आप को सामने रख के साइड पे करें, और वो बंदा बार बार गलती करता है और बार बार सॉरी कर रहा है, 2 साल 4 साल 10 साल 20 साल तक वो सॉरी किए जा रहा है, लेकिन उसी बात पर सॉरी कर रहा है, आपका दिन ब दिन जो उसके खिलाफ रिएक्शन आपके अंदर आएगा ना वो बढ़ता चला जाएगा, इरिटेशन बढ़ती चली जाएगी। और यहाँ आज के हमारे इस प्रोग्राम का इख्तिताम होता है जी। दिस इज आज़ाद साइनिंग ऑफ। यू कैन ऑल्सो लिसन टू आर रेडियो स्टेशन एट www.radioazad.us। इसके अलावा अगर आप पोएम्स सुनना चाहते हैं, नज़में सुनना चाहते हैं, तो आप साउंड क्लाउड पे जा सकते हैं, मिक्स क्लाउड पे। स्पेशली बताना ज़रूरी है उन तमाम लोगों को जो शोज़ की रिकॉर्डिंग या अपने फेवरेट शोज़ की रिकॉर्डिंग सुनना चाहते हैं अपने टाइम के ऊपर, आप लोग मिक्स क्लाउड पे जाके रेडियो आज़ाद को सर्च कीजिए और हमारे शोज़ वहाँ पे आप उनकी रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। और ये तो आपको मालूम ही है कि जिन लोगों के पास आईफोन ऐप है, एंड्रॉयड है, ब्लैकबेरी है, स्मार्टफोन्स हैं, वो लोग हमें हमारे आईफोन ऐप के थ्रू सुन सकते हैं जो है रेडियो आज़ाद। तो हम याद रखिएगा, ज़िंदगी तो फिर मिलेंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिएगा, रब आपके लिए आसानी पैदा करेगा। खुदा हाफिज़।
3: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM. Inspire 105.1 FM.
4: This Black History Month, Inspire FM is recognizing the achievements of influential black Muslims.
5: Kyrie Andrew Irving, nicknamed Little Mountain, is an American professional basketball player for the Brooklyn Nets of the NBA. He was named the Rookie of the Year after being selected by the Cleveland Cavaliers with the first overall pick in the 2011 NBA Draft. A seven-time All-Star and three-time member of the All-NBA team, he won an NBA championship with the Cavaliers in 2016.
6: Landlords, let us take away the hassle of letting your property. Our comprehensive services include tenant vetting, rent collection and service charges, maintenance and repairs. Ideal Properties has two branches and have been established over 20 years and have gained a wealth of knowledge and experience.
7: If you are thinking of selling or letting your property, then speak to a member of our knowledgeable team about a free no-obligation market appraisal.
6: We can also offer guaranteed rental income.
7: Contact us on either Luton 721110 or 696050. Ideal Properties. Service with a smile, whatever your needs.
8: As-salamu alaykum wa rahmatullah. Bismillah. Qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, inna allaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. That Allah does not look towards your appearance and your wealth, but rather He looks towards your heart and your actions.
9: Biscard Pharmacy, your one-stop health and beauty pharmacy in Luton. Stockist of over 8,000 health and beauty products. At Biscard Pharmacy, we offer a range of services, including health advice and repeat prescriptions for collection and delivery to your home. We also offer a Hajj and Umrah vaccination. Come in and see us and ask about our stop smoking service. We're open 7 days a week till late, including bank holidays. Biscard Pharmacy, 157A Biscard Road, Luton. Call 457709.
10: Can you imagine a child growing up without the love and protection of their parents? Over 39,000 children in Gaza have lost one or both parents in the most brutal circumstances, and many of them have permanent injuries. Agosh UK, Al Khidmat Foundation, has launched its Gaza Orphan Care Programme. Sponsor an orphan in Gaza for £42 per month or at agoshuk.org.
11: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. On the authority of Abu Muhammad Abdullah, the son of Amr ibn al-As, may Allah be pleased with them both, who said, "The Messenger of Allah, may the blessings and peace of Allah be upon him, said, none of you truly believes until his inclination is in accordance with what I have brought." A good and sound hadith, which we have transmitted from Kitab al-Hujjah with a sound chain of authorities.
12: You could have the best product in the world, one that everybody wants or needs.
13: You could offer a quality service that really is second to none.
14: Or you could have offers that are simply unbeatable.
12: But it's all pointless if your potential customers don't know who you are.
15: That's those same potential customers who are also listening to Inspire FM right now.
16: Has it clicked yet?
15: To find out about an effective, ear-catching and low-cost advertising campaign, just click on inspirefm.org, then more, and advertise.
17: From the studios of Inspire FM, the time is now 12:30.
0: बचपन से सुनते आए हैं ये नहीं कहना वो नहीं करना सवाल नहीं पूछना और फिर इसी रवैये से हमारे ज़हनी और माशरती मसाइल उलझते चले गए हमारे मसाइल हमारे हालात से नहीं हमारे ख्यालात से पैदा होते हैं और ख्यालात दुरुस्त किए जा सकते हैं मैं हूं आजाद और अगर आप भी चाहते हैं कि हम सब आजाद हो सकें अपने ही पैदा किए हुए मसाइल से तो बात कीजिए क्योंकि अब बोल के लब आजाद है तेरे ओनली ऑन इंस्पायर FM
18: Hello and welcome, ladies and gentlemen. Hello and welcome, Dallas, Fort Worth, and the whole world listening to Radio Azad, Voice of the People. Tamam sunne walon ki khidmat mein assalamu alaikum. A very, very warm welcome to the show. Sun rahe hain ji aap bol ke lab azad hain tere.
0: Ghussa badhta chala jayega. Aisa hi hai?
2: Aisa hi hai.
0: To اپنے ساتھ بھی ایسا ہی کرنا ہے پھر کہ یار میرے سے ایک ہی چیز کب تک میں واپس جا کے وہیں سے شروع کروں گا بیسک سے. تو اپنے اوپر بھی غصہ کرنے کا یہ طریقہ پھر آپ ڈس انگیج کر لیں. میں مہینہ مہینہ دو دو مہینے نہیں بات کرتا لوگوں سے, کیونکہ ان کو بھی اگر احساس نہیں ہے تو اس سے اچھا پھر پیچھے ہی ہٹ جائیں پرماننٹلی. اور اگر میرا کنٹرول میرے نہیں ہے تو پھر بھی وہ مجھے چیز ٹریگر کر رہی ہے. الرجیز جن چیز سے مجھے ہوتی ہیں, میرا سانس بند ہوتا ہے, چھینکے مار مار کے میں بے ہوش ہونے والا ہو جاتا ہوں, تو کیا میں اس کے لیے اوائڈ نہیں کرتا؟ تو اس طرح لوگوں سے بھی اگر آپ کو الرجی اور وہ اپنے اوپر کام نہیں کرنا چاہتے تو آپ پیچھے ہٹ جائیں ان سے, دیٹس آل. جب تک آپ اس قابل نہیں ہوتے کہ کنٹرول آپ کے ہاتھ میں آ جائے, جب تک آپ کی الرجیز اس پہ کام کر کر کے ڈم ڈاؤن کر کر کے ان کو یا جو بھی آپ نے اس کے اوپر کرنا ہے, امیونٹی اپنی بڑھا نہیں لیتے, اس آدمی اس انوائرمنٹ یا اس جگہ پہ نہیں جانا پھر. یہ ایکسٹریم کیسز میں ہوگا.
2: بالکل. اور مجھے کسی کی دو لائنیں بڑی اچھی لگی, وہ یوٹیوب پہ میں سن رہا تھا ان کو. وہ کہتے صبح ہوتی ہے, شام ہوتی ہے, عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے. تو
0: تو یہ اگر ہم نے یہ دیکھنا ہے نا, یہ مجھے اسی پہ تو میں نے اسٹینڈ لیا تھا کہ بھائی ہزاروں سالوں سے لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں, میرے ارد گرد بھی جو لوگ آ رہے ہیں وہ بھی ایکسکیوز, میں کیا کروں, میری مجبوری ہے, میں فلاں ہوں, اس نے ایسا کیا, اس نے ایسا کیا, خدا نے ایسا کیا. میں کہا چلو ایک ایسا بندہ پیدا کرتے ہیں دنیا میں, آپ خود ہی کریٹ کرتے ہیں, جس کے خدا پہ کوئی الزام نہیں ہے, جس کے لوگوں کے اوپر کوئی الزام نہیں ہے. آپ کا جو بھی ڈیلنگ ہوئی اس ڈیلنگ کے, انہوں نے جو کیا آپ نے اس ڈیلنگ کے حساب سے ان کا جو رزلٹ ان کو واپس کر دیا, جتنا انہوں نے کیا آپ نے اسے تھوڑا سا زیادہ کر کے ان کو دے دیا, آپ نے حساب سیٹل کر لیا, بس ٹھیک ہے. اور کوئی گلہ شکوا نہیں, اگر کسی نے کیا تو آپ نے بھلا کیا تو اس کو آپ نے کمپنسیشن کی, کسی نے برا کیا اس کے حساب سے آپ نے اس کے ساتھ ڈیلنگ کر لی. لیکن اور پھر اس کے آگے بڑھ گیا آپ, کب تک انہی لوگوں کے ساتھ انہی باتوں میں انہی انوائرمنٹ میں الجھے رہیں گے؟ اس طرح ہم زندگی میں کچھ سیکھ نہیں پائیں گے. ایک ہی سبق جو بار بار سیکھتا ہے نا, اس کی کوئی زندگی نہیں ہوتی. وہ سیکھ لیا, اب آگے نکلیں کچھ اور سیکھیں. برین کام کرتا ہے جب کوئی نیا ٹاسک ملتا ہے اس کو, نئے انوائرمنٹ, نئے لوگ, نئے چیلنجز اس کو ملتے ہیں, تو وہ اور زیادہ بہتر کام کرتا ہے اور زیادہ بڑھتا ہے. ایک انسٹرومنٹ بجاتے رہیں گے تو ایک انسٹرومنٹ ہی آپ وہ برین وہ سیٹ ہو جائے گا, آپ کو اس کے بعد سوچنے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے, محنت کرنے کی. باقی انسٹرومنٹ بجائیں گے, باقی لوگوں کے ساتھ آپ ڈیلنگ کریں گے, چیزوں کو سیٹلمنٹ اوپر نیچے کریں گے. تو اس لیے ضروری ہے برین کے فنکشنز کو اور اپنے آپ کو آپٹیمم لیول پہ آپریٹ کرنے والے انسٹرومنٹ کے طور پہ مجبوری ہے انسان کی کہ وہ نیا سیکھے, نیا کرے, نیا کمفرٹ میں آ جانا, کمفرٹ زون کے اندر وہ ٹھیک ہے, لیکن اس کے بعد آپ سیکھیں گے کچھ نہیں. ناولٹی جو ہوتی ہے نا, نیونیس آف تھنگس, جب تک وہ نہیں آئے گی, جب تک آپ کا برین کو اور آپ کی باڈی کو چیزیں چیلنج نہیں کریں گے, آپ کبھی بھی آگے نہیں بڑھیں گے. وہ زون آف نون کے اندر ہی, کمفرٹ کے اندر ہی آپ گرفتار رہیں گے, اور پھر اس کے خلاف جب ایک وقت آئے گا جب چیزیں اس کے خلاف ہونے لگیں گی تو آپ کے ہاتھ سے پھر چیزیں نکلنا شروع ہو جائیں گی. اسی لیے ڈفرینٹ قسم کے لوگ آپ کی زندگی میں ہونے چاہیے, ڈفرینٹ قسم کے انوائرمنٹ میں آپ کو جانا چاہیے, ڈفرینٹ قسم کے آپ کے جو روزگار کے طریقے ہیں, مینی ڈفرینٹ ویز آف میکنگ یور انکم اینڈ اسٹف, یہ سب ڈفرینٹ ڈفرینٹ آپ کے پاس آپشن ہونی چاہیے. کوئی بھی ایک چیز گر جاتی ہے, یہاں کسی ایک ہی دوست کے اوپر بیٹھے رہتے ہیں لوگ, وہ دوست جب زندگی سے نکلتا ہے اس کو پتہ نہیں چلتا آپریٹ کیسے کرنا ہے. ڈپریشن آتا ہے, بہت لمبا ٹائم ضائع ہو جاتا ہے باؤنس بیک کرنے کے لیے. کسی کی کوئی شادی ٹوٹ جاتی ہے, انہوں نے سب کچھ بیوی, جیسے ہی شادی ٹوٹ گئی انہوں نے سب کچھ بیوی کے ارد گرد بنایا ہوتا ہے یا شوہر کے ارد گرد بنایا ہوتا ہے. ان کے کوئی دوست نہیں ہوتے, ان کا کوئی پیشن نہیں ہوتا جس کو وہ پرسو کریں, ان کے کوئی ایسی ریلیکسیشن کا اور کوئی سامان, کوئی ایسے دوست یہ نہیں ہوتے. وہ کٹ جاتے ہیں لوگوں سے اور اس کے بعد پھر انہیں زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہوتا. پھر وہ کبھی بندے پہ, پھر خدا پہ, پھر نیچر پہ, پھر اس قسم کی. کم عقل لوگ جب اپنی زندگی کی پلاننگ ٹھیک نہیں کرتے تو پھر وہ گلا شکوا بہانہ بس یہ باتیں کرتے رہتے, کیونکہ خدا نے آپ کو موقع دیا ہے. آپ کے مختلف قسم کے دوست کیوں نہیں, ایک قریب ترین چار چھ دوست ہونے چاہیے, ان میں سے ایک مر سکتا ہے, دوسرا بگڑ سکتا ہے, تیسرے کا دل دماغ بدل سکتا ہے, ابھی بھی تین ہیں. ان کے ساتھ آپ پریشر کو ہینڈل کرنا سیکھیں گے. آپ جو بھی آپ کا پیشن ہے یا زندگی کا مقصد ہے, وہ اس سے آپ انہنج, اس سے آپ بالکل آپ کے پاؤں نہیں اکھڑ جائیں گے. زندگی اس لیے نہیں ملی تھی کہ آپ ایک شادی کر لیں یا ایک بچہ پیدا کر لیں گے یا ایک دوستی صرف کریں گے یا ایک مدنے سے محبت کریں گے آپ. یہ ہم نے خود ڈرامہ بنائے ہوئے, رب کہیں کس اس کے بارے میں ایسی کوئی باتیں نہیں. ہماری کیپیسٹی بڑی کم ہے, हम बड़ी जल्दी कंफर्टेबल हो जाते हैं और फिर सारा कुछ उस बंदे पे लाद देते हैं, फिर वो बंदा हमारी एक्सपेक्टेशन के वज़न के अंदर दब जाता है और हमें ना सोचने का कोई तरीका आता है, ना वो हम उससे खुश हैं, ना हम उसकी किसी बात से फिर खुश हैं, और फिर दुखी दुखी से रह के अपनी पूरी ज़िंदगी इस तरह ख़राब कर लेते हैं। ये अहमकों की ज़िंदगी है, ये अहमकों की जन्नत में ऐसा होता है। एक बेस्ट फ्रेंड, एक फलां, एक नौकरी, एक तरीका पैसे का, ये सब चीज़ें जैसे ही वो चीज़ आपके हिलती है आप पूरे के पूरे हिल जाते हैं, और फिर पूरे की पूरी इंसानियत की कोई मतलब नहीं रहता, खुदा की तरफ दिल नहीं जाता फिर आपका, हालांकि ये सब इनेप्ट लॉस है, अनस्किलफुल हैंडलिंग ऑफ लाइफ की वजह से हुआ ही। इतने बड़े बड़े डिबेकल्स होते हैं, इतने बड़े बड़े डिबेकल्स होते हैं, आपके करीब तरीन लोग जिंदगी के, माँ बाप मर जाते हैं, दोस्त बेहतरीन मर जाते हैं, आपकी ज़िंदगी के करीब तरीन लोग जिनकी वजह से आपने ज़िंदगी एक सर्टन तरीके से बनाई होती है, वो आपसे नाराज़ हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, अलहदा हो जाते हैं, फौत हो जाते हैं, वो फिर ज़िंदगी लोगों के काबू से निकल जाती है और फिर अजीब दुखी दुखी सी वो ज़िंदगी गुजारते हैं, और उनको और दूसरों को भी वो यही बताते हैं कि ज़िंदगी ऐसे है, बिल्कुल ऐसे नहीं है ज़िंदगी, ये हमने ऐसा किया है, हमारी कैपेसिटी चीज़ों के अंदर इतनी ज़्यादा है लेकिन हम ऑपरेट नहीं करना चाहते, हम डिफरेंट लोगों के साथ इंटरेक्शन नहीं करना चाहते, हम कंफर्ट के अंदर गिरफ्तार होके चाहते हैं अब ये कंफर्ट आखिरी दिन तक ऐसा ही रहे, इंसान से हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो परमानेंटली ऐसा रहे, ऐसा नहीं हो सकता परमानेंटली इंसान, उसकी ज़िंदगी में कभी क्या होगा, कभी उसके फाइनेंशियल मसले होंगे, कभी हेल्थ के मसले होंगे, कभी फैमिली के मसले होंगे, आपने अगर किसी के साथ चलना है तो अपने आप को हैंडल करना पड़ेगा, आप चाहते हैं कि आप एक अच्छे दोस्त बने तो अपने फाइनेंसेस, अपने रिश्ते, अपने मामलात सारे जब आप सेटल करेंगे, हैंडल करेंगे, तो क्वालिटी टाइम का आपके पास किसी दोस्त के लिए वक्त होगा, तो वो दोस्ती पनप पाएगी और लंबे अरसे तक आपको दोस्त से वो फीलिंग आती रहेगी। लेकिन ये जो लोग बाकी होते हैं, ये कई लोग आते हैं जी दोस्ती में फलां, ये वो सिर्फ फटीक देते हैं आपको, सिर्फ परेशान करते हैं, सिर्फ दुखड़े सुनाते हैं, सिर्फ उनके एक लाइफ में मसले होते हैं, और फिर आप इसीलिए लोगों से अवॉइड भी करना शुरू कर देते हैं कि कोई नई बात, कोई नई चीज़ हो, और ये कि मसले ना बताएं ऐसा नहीं है, शेयरिंग और बात है, ये कि ज़रूरत के वक्त दोस्त आपके काम ना आए, आप उसे एक्सपेक्ट ना करें, ये भी और बात है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मुसलसल एक ही बात करते रहना, मुसलसल एक ही तरह का रोना रोते रहना, मुसलसल एक ही चीज़ पर पीछे पड़े रहना किसी दोस्त के, वो आप लूज़ कर जाएंगे लोगों को। ये जो कुछ नहीं है इस वक्त मेरे पास या आपके पास या किसी के पास, वो हमें या तो लेना नहीं आया, या हम उसको डिज़र्व अभी तक नहीं करते, या हमें अभी तक उस बात की अकल नहीं आई है कि वो हमारे लिए है या नहीं। ये तीन चीज़ें ज़िंदगी में जब आप देख लेंगे तो मसाइल मसाइल रहते नहीं, और ये सारी बातें अप्लाइड हैं मेरी लाइफ में, इसलिए मुझे ये सोचने समझने की ज़रूरत नहीं है, मैं ये किसी वक्त कहीं भी बैठ के बता सकता हूँ।
2: जी सर, मैं इसी से रिलेटेड एक बात करना चाहता हूँ, जैसे अभी मेरी जॉब है, आई वर्क इन अ वेरी वेरी स्ट्रेसफुल एंड हाई स्पीड हाई डेंजरस एनवायरनमेंट, और जब मैं वहां होता हूँ आई डोंट फील डेंजरस, और मुझे सेफ्टी की बिकॉज एवरीथिंग जस्ट कम्स टू मी, और मैं effortless ease se kaam karta hu, like I go out with trainees, I show them how to do, and they're like how and why are you so calm, to main us baat ko jab sochta hu, like जब ये ऐसी कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन, लाइक जब बंदों से डीलिंग की बात आती है
0: जी,
2: तब मैं होता हूँ
0: भाईजान, ये आपको बात को गौर से समझें, योर जॉब इज नॉट इम्पोर्टेंट, योर लाइफ इज, जॉब आज ये है कल कोई और हो सकती है। मसला हमारा ये, मैं आज ही किसी को बात बता भी रहा था, समझा भी रहा था कि हम लोग, उन्होंने मुझे बात कर रहे थे कि अमेज़ॉन ने चीज़ों को इतना यूज़र फ्रेंडली बना लिया कि आप उनके ऐप पे जाएं, आप सिर्फ नाम लेते हैं किसी चीज़ का तो वो चीज़ अवेलेबल कर दी जाएगी। तो मैं उनको बात समझा रहा था, मैं कब से आप लोगों को कह रहा हूँ कि जो कुछ भी आपको ज़िंदगी में चाहिए, जो भी आपको चाहिए, उसको यूज़र फ्रेंडली बनाएं। आपको इंसान चाहिए अपनी ज़िंदगी में तो आप एंड यूज़र आपके पास आएगा, जो इंसान है वो आपको चाहिए, तो आप अपनी ज़िंदगी को, अपनी ज़बान को, अपनी डीलिंग को यूज़र फ्रेंडली होंगे तो चीज़ आपके पास आएगी। आपको बिजनेस चाहिए तो आप कितने यूज़र फ्रेंडली हैं, आपको हर चीज़ को जितना आसान करेंगे लोगों के लिए, क्यों रब ने, और साइंस चेक करें, रब ने अपने अल्फाज में कहा तुम में से बेहतरीन इंसान वो जो दूसरों के लिए आसानियां पैदा करता है, उससे क्या होगा, लोग आपकी तरफ खिंचे चले आएंगे, आसानी पैदा करेंगे, ज़बान को आसान करेंगे कि उनको समझ आए, ख्वाहिश को आसान करेंगे, ज़रूरत को आसान करेंगे, मोशन को आसान करेंगे, तो लोगों को समझ आएगी कि आपको क्या चाहिए। आप کنوینینٹ ہوں گے کہ آپ سے لوگ آ کے بات کر سکیں, مسائل بیان کر سکیں, پریشانی بتا سکیں, تو آپ حل بھی کر پائیں گے اور ایموشنز بھی ہوگا, لوگ آپ سے کنیکٹ بھی کر کے رہیں گے. اور رب کیوں چاہتا ہے کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں؟ کیونکہ اس کی آسانی, اس آسانی پیدا کرنے والا بندہ, اس نے اپنی کتاب میں آسان ترین زبان سے اتنی مشکل چیزیں آپ کو بتائیں تاکہ لوگ کنیکٹ کر سکیں, اس کی طرف آ سکیں. تو اس کے بندے بھی جو ہیں جتنا چیزوں کو آسان کریں گے بندے ان کی طرف کھینچے چلے آئیں گے, کیونکہ بندہ بندے کے ساتھ, آپ کی زبان میں بندہ بندے تو دارو ہے, ہم نے جو کر دیا وہ بندہ بندے تو مارو کر دیا نا ہم نے, کیونکہ حرکتیں ہم ایسی کرتے ہیں. تو جتنا آپ خود کو آسان کریں گے, اب یہ جتنا دیکھو بزنس میں, اب آپ ایک کام کرتے ہو, کرتے کرتے آپ کو چیزوں کی سمجھ آ گئی ہے تو یو آر ڈوئنگ یور جاب ود این ایفرٹ لیس ایز, اٹس کمنگ نیچرلی ٹو یو, ایون پیپل آر آسکنگ ہاؤ آر یو ایبل ٹو ڈو اٹ. اتنی چیزیں جگل کر کے آپ بڑے کام رہ کے ساری چیزیں ڈیل کر لیتے ہو, تو یہ کمال قسم کی ایک آپ کا جو ہے نا وہ ایک آپ کے بارے میں ایک فیلنگ ڈیولپ ہوگی ہے. آپ خود سوچو لائف میں آپ یہ نہیں کر پا رہے, تو مجھے زندگی میں یہ باتیں سمجھ آئیں. اچھے سیلز مین کا مقصد اچھا انسان بننا ہے, اور کوئی بھی چیز کو اچھے طریقے سے آپ بیچ سکیں, پروڈکٹ کو, آپ سروس کو, اپنی بات کو. اسی طرح لائر ہیں تو آپ نے جو بھی لاجک اور ریزن یوز کرتے ہیں لاء کو, وہ آپ اپنی زندگی میں استعمال کریں. اسی طرح آپ ڈاکٹر ہیں تو کتنے ہی ڈاکٹروں کی صحتیں برباد ہیں, وہ ڈاکٹر ہیں تو سارا علم جو ہے میڈیسن کا اور ہیومن اناٹمی کا, وہ بایولوجی کا, وہ سارے کا سارا یوز کریں اور خود کو ٹھیک کر کے دکھائیں سامنے, یا دوسروں پہ اپلائی کر کے دکھائیں. یہ سارا کچھ جو ہے نا ہمیں کنڈیشن کر دیا گیا کہ یہ نوکری کے لیے, یہ ایکچولی نوکری کے لیے نہیں ہے, یہ زندگی کے لیے ہے. نوکری اس میں 9 to 5 کا ایک کام ہے صرف, باقی گھنٹے جو ہیں 16 اس میں کیا کریں گے ہم؟ تو یہ سمجھنا ہے. جو چیز بھی آپ کو اچھی کمیونیکیشن ہے آپ کی اپنے جاب کے بارے میں بتا سکتے ہو, یا اچھی کمیونیکیشن ہے آپ اپنے ساتھ, اپنے سبارڈینیٹس کے ساتھ, یا پیپل دوز ہو ورک ود یو ان کے ساتھ آپ کا اچھا ریلیشن شپ ہے, تو گھر میں وہ ریلیشن شپ نظر آنا چاہیے, ورنہ میرے کسی کام کے نہیں ہو آپ. اسی طرح آپ جو کام آرگنائزیشن میں کسی میں کام کرتے ہو, آپ کے اندر وہ ابلٹی نظر آنی چاہیے جو آپ کی پروفیشن نے آپ کو دی ہے. آپ فوجی ہو, آپ کا ڈسپلن نظر آنا چاہیے, آپ کی پنکچوئلٹی نظر آنی چاہیے, آپ جو ورڈ بولیں اس کو آپ کو کر کے دینا ہے. اس کو کہتے ہیں کہ آپ نے کسی سے کچھ سیکھا, ورنہ جنہوں نے میرے ساتھ, جن لوگوں نے یہ ساری چیزیں دیکھیں, کیں, سیکھیں, اور ان تمام چیزوں میں وہ مجھ سے بہتر تھے, ہیلتھ میں وہ ہم سے بہتر تھے, آج ان کی ہیلتھ برباد ہے, فائنینسز میں وہ ہم سے بہتر تھے, آج ان کے فائنینسز ان کے قابو میں نہیں, جلدی رشتے کرنے میں, لوگوں کو بنانے میں اور لوگوں کے آگے کھڑے ہو کے فوٹو کھنچانے میں اور بڑے بڑے کام کرنے میں وہ ہم سے آگے تھے, آج کوئی ان کا نہ نام لیتا ہے, نہ ان سے کوئی رشتہ رکھتا ہے, نہ وہ سیکھتا ہے, ہر وقت روتے پیٹتے پریشانی رہتے ہیں اور دکھی رہتے ہیں کہ جو کچھ میں نے کیا اس کا مجھے کچھ حاصل نہیں ملا. یہ سب جو ہے نفسا نفسی ہے, وہی ساری باتیں سیڈس جو لوگ کرتے ہیں وہ سب کر رہے ہیں. تو سیکھا کیا آپ نے؟ یہ سیکھا کہ آپ کی زندگی آپ کے بالکل ایسی ہونی چاہیے جیسے آپ کی جاب ہے. اسی طرح ایفرٹ لیس ایز سے آپ اپنا کام کر سکیں, آپ ایفرٹ لیس ایز سے اپنے فائنینسز ہینڈل کریں, ایفرٹ لیس ایز سے اپنے ایموشنز ہینڈل کریں, ایفرٹ لیس ایز سے اپنے ریلیشن شپس ہینڈل کریں. یہی سارے کام آپ بزنس میں کرتے ہو کہ نہیں جاب پہ؟ وہ گھر پہ کیوں نہیں کرتے؟ یہی چیزیں ہم نے سمجھنی ہیں کہ وہ سب کا سب جو آپ کی ذات میں وہاں ہے, یہاں آئے گا تو اس کا مطلب ہے آپ نے اس سے کچھ سیکھا اور اصل فائدہ آپ کا ابھی ہوا. نائن جاب میں تنخواہ کے لیے آپ کام نہیں کرتے. ڈگری جو ہوتی ہے نا, کسی بڑے سیانے بندے نے کہا تھا, جب آپ کو ڈگری ملتی ہے یا وہ کوالیفیکیشن ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا. اکثر وہ ڈگریز ہم جو لیتے ہیں جب جاب کرنے جاتے ہیں, وہ پوری کی پوری ڈگری اس جاب میں کام ہی کہیں نہیں آتی. پر ڈگری کا مطلب یہ ہے کہ 16 سال یا 14 سال تک آپ مسلسل اسکول گئے, آپ نے امتحان کا پریشر برداشت کیا, آپ نے وہاں پیئر پریشر برداشت کیا, آپ نے وہاں پر چھوٹی موٹی چیزیں, مسائل, تکلیفیں, پریشانیاں ہوئی ہوں گی اسکول میں, کالج میں, یونیورسٹی میں, سب برداشت کیں. یو سیلڈ تھرو, اور اس میں سے آپ ایک کاغذ کے ٹکڑے کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کی یہ ڈگری ہے آپ کی, آپ نے اس میں سے بچ کے نکلے, اس میں سے کچھ آپ کو مار پڑی, کچھ آپ نے حاصل کیا, لیکن آپ کنسسٹنٹ رہے, اس بات پہ آپ کو نوکری دیتے. یہ ہے کوالٹی. ڈگری اس لیے لی تھی, اس لیے نہیں لی تھی کہ اس سے میں ڈاکٹر بن جاؤں گا, اس سے میں پیسے کماؤں گا. اور میں اپنے بچے کو اس دن بتا رہا تھا کہ یہ ڈاکٹر بننے کے لیے تجھے ڈاکٹری میں نہیں ڈالا ہوا, ڈاکٹر تو میرے ارد گرد, اگر مجھ پہ چلے, میرے ارد گرد کوئی ایسا ڈاکٹر نہیں ہے جس کو میں چاہوں کہ میرا بچہ ویسا بنے, کوئی اس قابل نہیں. بیکاز لائف میں ہم سارے فیل ہیں, چاہے ڈاکٹر ہیں, چاہے انجینئر ہیں, چاہے کچھ بھی ہوں, میں کبھی اس ڈاکٹری کی طرف نہ ان کو لے کے جاتا. लेकिन डॉक्टर बनने से आपको उनको, मैं बता रहा था बॉडी है क्या चीज़, आपको पता होनी चाहिए मेडिसिन कैसे काम करती है, देनी भी है या नहीं देनी, ये कैसे काम करती है, और उसके बाद आप अपना काम घर से भी शुरू कर सकते हैं फीस लेके या उनको आपको इर्द गिर्द के इलाके से, ताकि आपको एक हुनर आ जाएगा जिसमें आप अपने पे अप्लाई करेंगे, अपनी फैमिली पे अप्लाई करेंगे, अपने सीनियर्स पे अप्लाई करेंगे, अपने इर्द गिर्द के गरीब मस्किन जो लोग हैं उस पे अप्लाई करेंगे, मुझे ये बंदा बनाना है आपको, और उसके ये जब बन जाएगा पैसा बाय प्रोडक्ट है वो आ जाएगा, और उस वक्त तक आप इतना चीज़ों को बिल्डअप कर लेंगे कि खुद, लेकिन आपको और फर्स्ट आने की भी ज़रूरत नहीं है, अपनी जान को हलकान करने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि ये सारी चीज़ है क्या, ये काम कैसे करती है। दसवें नंबर पे भी गुड, बीसवें पे भी आप परफेक्टली फाइन है, एज लॉन्ग एज यू अंडरस्टैंड द होल मैकेनिक्स, मेडिकल कॉलेज है क्या, वरना और बेसिक अगर जो तुम बोल रहे हो वो कर नहीं रहे, जो काम तुमने कमिटमेंट कर रहे हो उसको तुम पूरी नहीं कर पा रहे, काम हो जाएगा देख लेंगे कर लेंगे का मतलब है तुम वही प्रोडक्ट बन रहे हो जो गांव में या शहर में लोग हैं, और इतने जानवर हमें एक और जानवर को रिफाइंड बनाने के लिए क्यों पैसे ज़ाया करूँगा या अपना टाइम और इमोशन में क्यों ज़ाया करूँगा, वो तो सेल थ्रू करते हैं, तुम कुछ भी पढ़ोगे सेल थ्रू करके निकल जाओगे, तो इंसान कैसे बनोगे, मुझको बेसिक इसके ऊपर ध्यान है मेरा, ना मुझे रिजल्ट चाहिए फर्स्ट आने के, ना मुझे ये चाहिए कि जी आपने पैसे क्या बनाएंगे, क्योंकि मुझे वो कमिटमेंट चाहिए, आप जो बोले वो नज़र आना चाहिए, मुझको इंडिविजुअल क्रिएट करना है, और अगर आप वो नहीं बन सकते तो मेरा टाइम एफर्ट पैसा सब ये सब ज़ाया हो जाएगा, मुझे नहीं चाहिए, उसकी जगह आप रेगुलर कोई भी काम करो आई डोंट केयर, तो तुम सेटल भी हो जाओगे काम भी कर लोगे, बस दुनिया तुम्हें चलाकी भी सिखा देगी तेज़ी भी सिखा देगी, और आखिर में तुम रोते हुए पीटते हुए परेशान होते हुए एक और बंदा इजाफा हो जाएगा, और मेरा सारा टाइम और एफर्ट और एनर्जी ज़ाया हो जाएगी एक इंसान को जिसको मैं इतना कुछ दे रहा हूँ। तो जब तक हम अपनी औलादों को ये बातें नहीं बताएंगे, अपने रिश्तों में ये बातें नहीं बताएंगे, और दूसरी बात, और जब तक ये लोग अपने पे काम नहीं करेंगे ये हमेशा डरे रहेंगे। अगर कोई बंदा अपनी हेल्थ पे काम नहीं करता, अपनी मेंटल हेल्थ पे काम नहीं करता, अपनी फिजिकल हेल्थ पे काम नहीं करता, अपनी स्पिरिचुअल हेल्थ पे काम नहीं करता, कुछ दिनों के बाद दूसरा बंदा जो जो सब कर रहा है उसके लिए आप रिडंडेंट हो जाएंगे, वो बंदा आपसे आगे निकल जाएगा, और आपकी इनसिक्योरिटी कॉम्प्लेक्सेस घबराहट बढ़ती रहेगी हमेशा, आप फिजिकली उनसे पीछे रह जाएंगे तो आपको लगेगा मैं फिजिकली इतना अट्रैक्टिव नहीं रहा, आप मेंटली पीछे रह जाएंगे तो आपको लगेगा मैं डम हूँ या मेरी बात की कोई तुक्की नहीं बन रही, और या मुझे मेरे साथ वो टाइम नहीं स्पेंड करना चाहते। ये बेहतरीन मोहब्बत करने वाले लोगों के साथ, दोस्ती में हो, शादी में हो, पार्टनरशिप में हो, किसी चीज़ में भी हो, अगर आप साथ नहीं चले वो उस इंसान के जो आपको वो मोटिवेट नहीं कर रहे, इंस्पायर नहीं कर रहे, या वो दूसरा बंदा आपको मोटिवेट या इंस्पायर नहीं कर रहा। मेरा कोई ऐसा दोस्त नहीं है, मेरा कोई ऐसा फैमिली मेम्बर नहीं है जिसके साथ मेरा ताल्लुक है और वो मुझे इंस्पायर नहीं करता किसी ना किसी फील्ड में, और मैं भी, मुझे लोग कहते हैं कि आप इसमें इंस्पायर कर रहे हो, जब वो बोलते हैं तो जब वो उससे ऊपर नीचे करते हैं, फिर मैं बता भी रहा हूँ साथ साथ कि अगर इंस्पायर कर रहा होता तो आप ये नहीं ये कर रहे होते, इस पर ध्यान दो, कार्रवाई पे ध्यान नहीं, तो मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप मुझे कहें जी आप बड़े इंस्पायरिंग हैं, आप बड़े लविंग हैं, आप बड़े केयरिंग हैं, हमने आपने हमारे लिए ये किया, आप बड़े नाइस हैं, उसमें बदले में दे क्या रहे हो, एटीट्यूड कम करो, बेवकूफ़ी कम करो, स्टुपिडिटी कम करो, इनसिक्योरिटीज़ कम करो, अपने काम पर ध्यान दो, जो कमिटमेंट किए वो पूरी करो, अपने आप को स्ट्रांग करो, कोई पैशन है परसू करो, क्रिएट करके कोई चीज़ दिखाओ, खुश होकर दिखाओ, ग्रेटफुल होकर दिखाओ, और ज़्यादा ग्रेटफुल होकर दिखाओ, ये काम है आपके, इससे लोग आपके साथ, आपको कुछ नहीं करना, और इन सारे कामों में, ये रब से सीखा है मैंने, इन सारे कामों में क्या होगा, आप अपने इंडिविजुअल बनते जाएंगे, आपकी हाई सेल्फ इस्टीम होगी, आप मेंटली फिजिकली स्पिरिचुअली बेहतर इंसान बनेंगे, आपका फ़ायदा होगा, मैं रहूं या ना रहूं आपके साथ या आपकी ज़िंदगी में, आपका फ़ायदा हो जाएगा, तो रब भी यही चाहता है हमसे, क्योंकि वो गिविंग है, उसकी वापसी का उसको टेंशन नहीं है, वो खुद मिल जाएगा, आपके लिए वो चाहता है कि आपका सिस्टम एक बन जाए, आप अपने लिए किसी काबिल बनो, जब बन जाओगे तो फिर फैसला करना मेरे साथ रहना या मुझे छोड़ के जाना, ये असल चीज़ है इंसान बनाने वाली, और जिस इंसान का इतना ज़र्फ नहीं होता, इतना कैरेक्टर नहीं होता, और यहाँ इंसान बार बार इंसान होने के नाते वो इतना नीच हो जाता है, मुझे छोड़ के ना जाओ, मुझे ये किया मैंने तुम्हारे लिए, वो किया मैंने, वो किया मैंने, कुछ नहीं किया, मैंने अपने लिए कर रहा था साथ आपके लिए भी कर रहा था, मैंने अच्छा खाना बनाया, आप मेरे साथ उठते बैठते चलते हो, आप भी वो खाएं, मैंने एक चीज़ क्रिएट की, आप उसमें मेरी हेल्प करते हो, वो आपके लिए भी, आप उसको इन्जॉय करें, सो आपने और मिलके आपने मेरे साथ क्रिएट किए, तो खुद इन्जॉय करो, कंपनी है, दोस्ती है, रिश्ते हैं, इन्जॉय करो, डरो मत, घबराओ मत, हर वक्त परेशानी में ना रहो, تو یہ جب تک اس طرح سوچیں گے نہیں ہم تب تک ہماری زندگی میں کبھی میریکلز نہیں ہو سکتے, اور نہ کبھی لوگ سوچ سکتے ہیں کہ آپ ایسے کیوں ہیں. آپ ایسے اس لیے کہ آپ نے سوچ کا طریقہ بدلا, آپ نے دھیان گیونگ پہ رکھا, آپ لوگ آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں گے, ڈر ختم ہوا, آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی کہ یہ سب کہیں اور سے آ رہا ہے, اور جس نے ابھی تک اتنا دیا وہ مجھے اور بھی دے گا, مجھے صرف اس کو ڈیزرو کرتے رہنا ہے, مجھے اپنے پہ کام کرتے رہنا ہے, مجھے اپنے دل کو دماغ کو صاف رکھنا ہے تاکہ اس میں صاف چیز کی جگہ بن سکے, صاف احساس کی جگہ بن سکے, کلین لوگ کلین سوچیں کلین کام کی جگہ بن سکے, خود بخود آتے رہیں گے اور ایک سے بڑھ کر ایک آئے گا. اس لیے ٹینشن ختم ہوگی, ڈر ختم ہوگی, یہ چھوڑ دے گا, اس کو یہ نہیں دیں گے تو ایسا ہو جائے گا, وہ ایسا سوچ رہا ہے اس کو یہ نہیں دیں گے تو ایسا ہو جائے گا, اس کو ٹائم نہیں دیا تو یہ کر دے گا, اس کو اگر اچھا فیل نہیں کرایا تو ویسا کر دے گا. یہ سب آپ کے اپنے مسائل ہیں, آپ خود کریں گے, ہم آپ کو انوائرمنٹ دیں گے ساتھ ساتھ, ہم بھی اس میں پنپ رہے ہوں گے ساتھ ساتھ, ایوالو کریں گے, گرو کریں گے, آپ بھی کریں گے اور چیزیں آپ کے لیے بہتر ہوں گے. ہم آپ کے ساتھ نہیں بھی رہے تب بھی آپ سوا لاکھ کے ملین ڈالر مین ہیں آپ یا وومن ہیں. یہ ہے سوچنے کا طریقہ, اگر ہم اس ڈگر پہ سوچنے لگ گئے تو ویسے ہی اتنا کچھ مل جائے گا کہ نہ تو شکر ختم ہو رہے ہوں گے اور نہ ہی مرنے سے پہلے آپ کی انجوائمنٹ ختم ہو رہی ہے, جو کہ بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے لائف کا. انجوائمنٹ, انجوائمنٹ اینڈ فری ول ٹو چوز, یہ دو چیزیں اگر کوئی بندہ کر گیا, جو لوگ عبادات کرتے ہیں, انٹرنس یو نو کمپنیز بناتے ہیں, نان پروفٹ آرگنائزیشنس کے لیے کام کرتے ہیں, راتوں کو جاگتے ہیں, اتنا کچھ کرتے ہیں, ان کو کیا, ان کو کچھ مل رہا ہے, وہ مل ساتھ ساتھ رہا ہے اور ہمیشہ مل رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے ہیرا سنگھ جی.
2: جی سر, ابھی آپ کی باتوں سے سر آپ کی اتنے دھیان سے سن رہا تھا, اتنے دل کو لگ رہی تھی, مجھے ایک بات ابھی سمجھ آئی. آپ جو بھی کر رہے ہو وہ آپ ہمیشہ کہتے ہوئے بات, جتنی اوتھینٹیسٹی اور پیشن سے کرتے ہیں وہ بہت ضروری ہے ہر کام کے لیے. اور میں نے یہ نوٹس کیا میرے جب جیسے ہم کام کی بات کر رہے تھے, I'm very passionate about it and that's why I'm able to flourish in that. پر جب اپنے آپ کے اپنے اوپر بات آتی ہے تو میرا مین ایموشن جو ہے وہ ڈر ہے. وہ میں ابھی مجھے سمجھ آیا اور اس کے اوپر مجھے کام کرنا ہے.
0: ایکچوئل میں نا جب آپ کا نہیں صرف ہم سب کا, کیونکہ سروائیول انسان کے لیے نا اس کی سرشت میں شامل کر دیا گیا کہ اس کو ہر وقت اپنے سروائیول میرا کیا ہوگا, ٹھیک ہے, اس سروائیول سے باہر نکلنے کا صرف ایک طریقہ ہے. جب آپ اس بات کو دماغ میں ڈرل کر لیں گے نا, آپ یقین کریں میں بچپن میں جتنا بیمار تھا مجھے نہیں لگتا تھا اور میرے ارد گرد بھی لوگوں کو نہیں لگتا تھا کہ میں اتنا لمبا سروائیو کروں گا. پھر میں جب جس دنیا کی ٹفسٹ ٹریننگ میں گیا مجھے اس میں بھی نہیں لگتا تھا کہ میں اس میں سروائیو کر پاؤں گا, ایزما کے ساتھ, ویک یو نو جسم کے ساتھ, بونس کے ساتھ, جو بھی جوائنٹس کے ساتھ, مجھے اس میں بھی یہ لگتا تھا میں نہیں سروائیو کر پاؤں گا. کچھ ایک دو کام میں نے ایسے کیے مجھے لگتا تھا میں یہ فزیکلی نہیں یا ایموشنلی نہیں سروائیو کر پاؤں گا. کچھ ایک دو ایسی چیزیں میری زندگی میں مجھے لگتا تھا میں اسپرچولی اس کو نہیں سروائیو کر پاؤں گا, لیکن میں نے سروائیو کیا. اس کا مطلب یہ تھا سارے میرے دماغ کے ڈاؤٹس تھے, آئی واز مینٹلی فزیکلی اینڈ اسپرچولی مور اسٹرانگر دین واٹ آئی تھاٹ آف مائی سیلف. تو آئی ڈڈ ناٹ نو دیز تھنگس بٹ مجھے سمجھ گیا, اور میں تین دفعہ نیئر ڈیتھ ایکسپیرئنس سے بچا زندگی میں, لیکن اس کے باوجود مرا نہیں میں ابھی تک. اس کا مطلب ہے کہ مرنے کا ٹائم جب بولا گیا ہے تو اس سے پہلے نہیں آئے گا. اور سروائیول کے لیے مجھ کو میں نے یہ بات سیکھی کہ پتھر کے اندر کیڑے کو بھی سروائیو کرنے کی ٹینشن نہیں ہے, اس کو بھی پانی اور خوراک جو ملنی ہے اس کو مل جاتی ہے. کیڑوں کو, پرندوں کو, جانوروں کو, شیروں سے لے کر لومبڑی, ہر ایک کی خوراک اس کو مل رہی ہے, وہ سب سروائیو کر رہے ہیں. سروائیول سے باہر نکلنا ہے, ڈر سے باہر نکلیں گے تو اصل انسان کا پوٹینشیل اس کو نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. دیکھیں جب آپ ٹینشن میں ہوتے ہیں آپ کو کچھ نظر ہی نہیں, ہر چیز آپ کو بلاک نظر آ رہا ہوتا ہے. جب ایک دم آپ ڈر جاتے ہیں, گھبرا جاتے ہیں, سامنے پڑی ہوئی چیزیں آپ کو نظر نہیں آتی, چیزیں چھپ جاتی ہیں آپ کی آنکھوں سے, بیکاز وہ اس پہ آپ کو ڈر کا پردہ آپ کی آنکھوں کے آگے پڑ جاتا ہے.
16: اور یہاں آج کے ہمارے اس پروگرام کا اختتام ہوتا ہے جی. دس از آزاد سائننگ آف. یو کین آلسو لسن ٹو آر ریڈیو اسٹیشن ایٹ www.radioazad.us. اس کے علاوہ اگر آپ پوئم سننا چاہتے ہیں, نظمیں سننا چاہتے ہیں, تو آپ ساؤنڈ کلاؤڈ پہ جا سکتے ہیں, مکس کلاؤڈ پہ. اسپیشلی بتانا ضروری ہے ان تمام لوگوں کو جو شوز کی ریکارڈنگ یا اپنے فیوریٹ شوز کی ریکارڈنگ سننا چاہتے ہیں اپنے ٹائم کے اوپر, آپ لوگ مکس کلاؤڈ پہ جا کے ریڈیو آزاد کو سرچ کیجیے اور ہمارے شوز وہاں پہ آپ ان کی ریکارڈنگ سن سکتے ہیں. اور یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ جن لوگوں کے پاس آئی فون ایپ ہے, اینڈرائڈ ہے, بلیک بیری ہے, اسمارٹ فونز ہیں, وہ لوگ ہمارے ہمارے آئی فون ایپ کے تھرو سن سکتے ہیں جو ہے ریڈیو آزاد. دعا میں یاد رکھیے گا, زندگی لی تو پھر ملیں گے, اور سب سے امپورٹنٹ بات, لوگوں کے لیے آسانیاں

आंखें, आंखों पर गिशावतुन पर्दा है, इसलिए वो हक को देख नहीं सकते। उनके दिलों पर मोहर है कि हक दिल में नहीं जाता। कानों पे मोहर है कि वो हक बात सुनने में दिलचस्पी नहीं रखते, सुन के फायदा नहीं उठाते। आंखों पे पर्दा है कि हक देख नहीं सकते। वला हुम, और अब उनका अंजाम क्या है? अजाबुन, अजाब, अजीमुन, बहुत बड़ा। ऐन ज़ामीम, अजाब का लफ्ज़ जो है इसका माना होता है सजा। हम उर्दू में वैसे अजाब को अजाब कहते हैं, इसलिए तर्जुमा आमतौर पर नहीं किया जाता, लेकिन लफ्जी माना क्या होता है? सजा। उनकी सजा बहुत बड़ी है। और अगर हम मजीद डिक्शनरी खोलें और इसकी और तय में जाएं, तो बेसिकली अजाब का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है शिद्दत प्यास से खाने और सोने को छोड़ने के लिए। शिद्दत प्यास से खाना और सोना छोड़ देना, ये अजाब का माना होता है। और ये जिस्मानी या जहनी दोनों तकलीफों के लिए आता है। अजाब सिर्फ जिस्मानी नहीं होता बल्कि और कैसा होता है? जहनी। बाज लोग जिस्मानी तौर पर कंफर्टेबल बिस्तर में लेटे हुए होते हैं, लेकिन नींद नहीं आती उनको, क्योंकि जहनी तौर पर टॉर्चर में होते हैं, क्रैंकी हो रहे होते हैं। जैसे बाज वक्त बच्चे सो के नहीं देते तो वो क्या होते हैं? डिस्टर्ब होते हैं। हम क्या कहते हैं? इनकी नींद डिस्टर्ब हो गई, अब ये सो नहीं रहे, तो वो एक पेन में होते हैं। तो अजाब जो है ये एक पेन है। और अजाब का लफ्ज जब तादीब के मानों में आता है, इसका माना होता है किसी चीज की मिठास दूर कर देना। अजबुन मीठे को भी कहते हैं असल में। ऐन दाल बे, अलिफ हटा दें, अजबुन। तो अजाब मिठास दूर कर देना, मजा खराब कर देना। तो उनके लिए अजाब है, यानी उनकी दुनिया में जितने मजे हैं वो सारे क्या हो जाएंगे? खराब हो जाएंगे, सब मजे खत्म। डेथ इज द डिस्ट्रॉयर ऑफ प्लेयर्स। जितनी भी दुनिया में इंसान को मजे मजे की चीजें मिली हुई हैं, खुशी के जितने भी सामान कानों और आंखों और दिल में हैं इंसान के, वो सारे के सारे मौत के साथ खत्म हो जाते। हाज़िमुल लज़्ज़ात है, लज्जतों को तोड़ फोड़ देने वाली है। तो उनका अंजाम क्या है? कि उनके लिए बहुत बड़ा अजाब है। अजीम जो है ये इसका ऑपोजिट होता है हकीर। हकीर का लफ्ज़ सुना कभी? हकीर क्या माना होता है? हकीर, इतना छोटा। अजीम होता है बड़ा और हकीर होता है छोटा। एक कबीर भी होता है, कबीर। कबीर क्या होता है? बड़ा। और उसका ऑपोजिट क्या होता है? सगीर। तो यहाँ ये नहीं कहा अजाबुन कबीर, कहा अजाबुन अजीम। अजीम जो होता है वो अपने साइज में बड़ा होता है, और उसके ऑपोजिट हकीर, साइज में छोटा। हकीर सी चीज है, हकीर अदना सी। तो सगीर से भी छोटा होता है हकीर। तो इसी तरह कबीर से बड़ा होता है अजीम। तो ऐसी चीज जिसका खतरा या जिसका साइज बड़ा हो, अजाब उन अजीम, वो अजाब जिसका खतरा भी बहुत है, टॉर्चर भी बहुत है, और उसका साइज भी बहुत बड़ा है। जहन्नम कितनी बड़ी है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा सहाबा के साथ बैठे हुए थे कि एक आवाज सुनी, तो आपने फरमाया तुम जानते हो कि किस चीज की आवाज है? ये एक पत्थर था जो जहन्नम में 70 साल पहले फेंका गया था और आज तय पे गिरा जाके। इतना गहरा, कभी गहरा कुआं देखा जिंदगी में? कभी आप ऊपर वाले फ्लोर पे खड़े होकर नीचे देखे तो कुछ भी नहीं। 30 फ्लोर्स 50 100 फ्लोर्स के ऊपर आप चढ़ के नीचे देखे, कुछ भी नहीं। कोई चीज फेंके एक सेकंड में नीचे पड़ी होगी। कितनी गहरी जहन्नम है, इसीलिए उसको हाविया कहा जाता है, गड़ा। वो गिरता ही जाएगा नीचे। बहरहाल, तो उनके लिए अजाब है बहुत बड़ा। अब आप देखिए कि ये जो दूसरा ग्रुप है, बेसिकली यहाँ जिक्र है उन लोगों का जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में आपका इनकार कर रहे थे, आपकी लाई हुई तालीम का इनकार कर रहे थे, जैसे अबू जहल, अबू लहब और दीगर लोग। तो बात यह है कि उन्होंने इनकार किया था। इनकार कब होता है किसी चीज़ का? जब उसका पता हो या ना हो, जानते हो या ना हो, जानते हो। तो मग़दूब अलैहिम कौन होते हैं? जो जानते हैं लेकिन मानते नहीं, करते नहीं। तो ये जो दूसरा ग्रुप है ये मग़दूब अलैहिम का है, जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचान लिया था। वो अरबी जबान के माहिर थे, कुरान को उन्होंने पहचान लिया और छुप छुप के सुना भी करते थे। और अबू जहल छुप के इकरार भी करता था कि हाँ मानते हैं, जो कुछ कहता है सही कहता है, लेकिन इसके बावजूद जिद में आ गए थे, खटधर्मी का शिकार हो गए थे। तो वो लोग जो जिद का शिकार हो जाए, हक को जानने के बावजूद उसको ना माने, उसका इनकार कर दें, उसको रिजेक्ट कर दें, इन्नल्लज़ीना कफरू, फिर उनका हाल क्या होता है? कि आप उनको कुछ समझाएं, कुछ डराएं, कुछ उन्हें जहन्नम का बताएं, कुछ

0: ये वो के लिए आती है, ठीक है, जब फेल के शुरू में आती वर्ब के। और ये जो वाओ और नून है ये जमा की अलामत है। अब जब आप तर्जमा करेंगे तो क्या करेंगे, वो करते हैं, ठीक है, वो करते हैं क्योंकि वाओ नून आ गया एंड में। और हमने मिसाल के तौर पे शुरू में देखा था युमिनून, क्या तर्जमा किया आपने, वो ईमान लाते हैं, और रूट क्या था उसका, हमजा मीन नून, ठीक है, और आखिर में फिर वही वाव नून। फिर क्या था, युकीमून, तो क्या तर्जमा किया आपने, वो कायम करते हैं। फिर क्या था, युन फिकून, हर एक के आखिर में आप देखिए वाव नून आता जाएगा। जहां भी आखिर में लफ्ज के वाव नून आएगा तो इसमें किस चीज की अलामत होगी, जमा की। इज इट क्लियर? ऊन के ऊपर जब एंड हो लफ्ज तो तर्जमा कैसे करेंगे आप, वो करते हैं या करेंगे या जो भी, लेकिन जमा की अलामत होगी, ठीक है। तालमून में भी वाव नून किसकी अलामत है, जमा की अलामत है, तातुम की, सामने वाले की, या गायब की और तातुम सामने वाले की। इसी तरह आप देखिए कुछ और लफ्ज भी हैं जो या से तो नहीं शुरू होते लेकिन मीम से शुरू हो रहे हैं, जैसे मुसलहून। अगर मुसलहून का वाव नून हटाए तो पीछे क्या रह जाता है लफ्ज, मुसलह। मुसलह कौन होता है, इसलाह करने वाला, और जब वाव नून लगा दिया तो क्या बन गया, करने वाले, ठीक है, ये जमा हो गया। अच्छा, मुफसिदून, वाव नून हटाइए क्या बाकी रहा, मुफसिद कौन होता है, करने वाला, और मुफसिदून कौन हो गए, करने वाले। मुमिनून, ईमान लाने वाले, अगर वाव नून हटा देंगे तो बाकी क्या रह जाएगा, मुमिन, ईमान लाने वाला। इज इट क्लियर? इंशाल्लाह इस तरह आप जब गौर थोड़ा सा भी करेंगे तो खुद तर्जमा निकालने के काबिल हो जाएंगे। आगे आप देखिए आयत 14 के एंड में है मुस्तहजीउन, इसके अंदर भी क्या है, वाव नून है एंड पर, ठीक है। इसी तरह आयत 16 के एंड पर मोहतदीन है, तो एक और अलामत भी होती है या नून की भी, जैसे मोमिनीन आता है, कभी काफिरीन आता है, कभी मुनाफिकीन आता है, ठीक है। तो या नून, ईन और ऊन दोनों ही किसकी अलामत होते हैं, जमा की होते हैं। इंशाल्लाह जब आगे उसको पढ़ेंगे उस वक्त डिस्कस कर लेंगे जी। बिमा कानू यकदिबून, बवजह उसके कि थे वो झूठ बोलते। वाह और इजा, जब कीला, कीला जो है इसका रूट भी काफ वाव लाम है, कौल। कौल किसको कहते हैं, बात को। यकूल और कीला का ओरिजिन एक ही है, लहुम उनको, ला ना, तुफसिदू तुम फसाद करो, ता जो होती है ये तुम के लिए होती है, जैसे अनआम ता, इनाम किया तूने, ठीक है, अनआम ता का क्या मतलब है, इनाम किया तूने। और तुफसिदू के शुरू में भी ता आ रही है, तुफसिदू का मतलब तुम फसाद करो, ला तुफसिदू ना तुम फसाद करो, फिल अर्दी जमीन में, फी पीछे पड़ा कहीं और, फी कुलूबिहिम, फी का माना होता है में, अल अर्द जमीन, जमीन में का क्या मतलब है, इनसाइड द अर्थ नहीं बल्कि ऑन द अर्थ। कालू वो कहते हैं, कालू का रूट काफ वाव लाम है, इन्नमा सिवाय इसके नहीं, नहनु हम, मुसलिहून इसलाह करने वाले हैं, नहनु हम, अला खबरदार, इन्ना हम, ये दो लफ्ज है, एक क्या है इन्ना और एक है हम, इन्ना पीछे पड़ा आपने, इन्ना लजीना, अला इन्ना हम हुमुल मुफसिदून। अब आप देखिए दो दफा हुम आ गया, और मुफसिदून में भी वो जमा है, तीन अब आ गए, ठीक, इन्ना हुम बेशक वो, फिर दोबारा आया हुम वो, और अल मुफसिदून में भी वो सब जमा, तीन दफा एक ही बात दोहराई जा रही है यहाँ, तो इसका मतलब है बहुत ही ताकीद है, देख लो वही है दरअसल, वही वही वही जो फसाद करने वाले हैं। वलाकिन, लेकिन, ये अरबी में वलाकिन और उर्दू में कैसे हम बोलते हैं, लेकिन, लेकिन ला नहीं, यशउरून वो शऊर रखते, व इजा और जब कीला कहा जाता है, रूट क्या, काफ वाव लाम, लहुम वास्ते उनके, आमिनू ईमान लाओ, आमना युमिनु ईमान, कमा जैसा के, आमना ईमान लाए, अन्नासु लोग, यहाँ फिर आप देखिए आमना हमजा मीम नून से, अन्नास, अन्नास का रूट है नून वाओ सीन। नौस हरकत करने को कहते हैं क्योंकि इंसान हरकत करता है जबकि पत्थर हरकत नहीं करते। इसी तरह नास का रूट जो है नून सीन या भी होता है। नसिया, नसिया का माना तो भूल जाना, तो इंसान भूल जाता है, तो इसलिए फिक्र बिल्कुल नहीं करें अगर आप तर्जुमा याद करके भूल जाएं, क्योंकि अक्सर लोगों को ये होता है कि हमने याद किया था लेकिन अभी याद नहीं आ रहा। ग्रुप में सुनाते हुए भी मुश्किल होती है, उस वक्त ज़्यादा भूलता है और फिर टेस्ट के दिन तो और भी ज़्यादा भूलता है। तो इसे एक्सेप्ट कर ले क्योंकि हम इंसान हैं, हम सब भूल जाते हैं। अन्नास लोग, कालू वो कहते हैं, अनु उमिनु क्या हम ईमान लाएं। आ का क्या मतलब होता है, कहाँ पढ़ा, अनजरता हूँ, अनु उमिनु क्या हम ईमान लाएं, कमा जैसा कि, आ मना ईमान लाए, असुफहा ये नया लफ्ज़ है। असुफहा जो है सफ़ीह की जमा, सफ़ीह सीन पा या हा सफ़ेहा यस्फ़हू, सीन पा हा का मतलब होता है बेवकूफ़ होना, रद्दी और नाकिस होना, कम अकल होना। कमा आमन सुफहाऊ अला खबरदार, अला का जो लफ्स है इसको कहते हैं हरफ तंबीह, वार्निंग दी जा रही, सुन लो आगाह हो जाओ, बी अवेयर जान लो, इन्नहुम बेशक वो, हुम वही, असुफहाओ बेवकूफ़ हैं। वलाकिन क्या माना, लेकिन कहाँ पढ़ा, अभी पढ़ा पीछे, ला नहीं, या लमून रूट क्या जी, ऐन लाम मीम इल्म, इल्म किसको कहते हैं, जानने को, और ला या लमून ना जानने को, ला इल्मी को उर्दू में इस्तेमाल नहीं करते अब, ला इल्मी, बात वही है सिर्फ कहने का लफ्ज मुख्तलिफ है। वा और इज़ा जब, लकू वो मुलाकात करते हैं, लिका कहते हैं अरबी ज़बान में आमना सामना करने को, लिका किसको कहते हैं, आमना सामना करना, एक दूसरे के सामने आना, लकू मुलाकात करते हैं, अल्लदीना उन लोगों से, लकू का जो रूट है लाम काफिया है, लाम काफिया, अल्लदीना उन लोगों से, आमनु जो ईमान लाए, कालू वो कहते हैं, आमन्ना ईमान लाए हम किसका माना है, नून अलिफ ना का, पीछे भी कहीं को ऐसी चीज़ गुजरी, एहदिना दिखा हमको। वा और इदा जब, खलाओ खे लाम वाओ, खला किसको कहते हैं, खाली होने को, तन्हा होने को, बैतुल खला का क्या माना होता है, ऐसी जगह जहां इंसान तन्हा होता है, ठीक है, तो खला का क्या माना है, अकेला होना, खाली होना हर दूसरी चीज से। इला तरफ शयातीन हिम, शयातीन किसकी जमा है, शैतान की, और इसका रूट है शीन ता नून, शतन, शतन का माना तो दूर होना, क्योंकि शैतान अल्लाह की रहमत से दूर हो गया ना, और यहाँ शैतानों से मुराद उनके लीडर्स हैं, उनके लीडर्स, क्योंकि शैतान भी इंसान को लीड करता है। कालू वो कहते हैं, रूट क्या है कालू का, का वाओ लाम, इन्ना बेशक हम, माकुम तुम्हारे साथ हैं, ये दो लफ्ज़ हैं मा और कुम, इन्नमा बेशक या सिवाय इसके नहीं, नहनु हम, पीछे पड़ा नहनु, नहनु मुस्लिहून, मुस्तहज़िऊन, मुस्तहज़ी इस्तेहज़ा कहते हैं अरबी में मजाक उड़ाना, किसी को निशाना तज़हीक बनाना, मुस्तहज़िऊन मजाक करने वाले, मजाक उड़ाने वाले, और इसका रूट है हा ज़ाई हमज़ा, बस यही इसका रूट है। अल्लाहु अल्लाह यस्तहज़िउ मजाक करता है या करेगा, यानी दुनिया में भी और आखिरत में भी, बिहिम साथ उनके, किन के साथ, जो ये मजाक उड़ाने वाले। वा और यमुद्दुहुम, यमुद्दु का रूट है मीम दाल दाल, मद, मद कहते हैं खींचने को, अरबी कायदा पढ़ा होगा क्या कहते हैं जब मद आती है, खींच के पढ़ो लंबा करो, यमुद्दुहुम खींच रहा है उनको, ढील दे रहा है उनको, फी में तुगयानहिम उनकी सरकशी में, तुगयानी उर्दू में कभी पढ़ी आपने, समुंदर में तुगयानी आती तो क्या होते, लहरें सरकश हो जाती हैं, अपनी हदों से बाहर निकलने लगती हैं, तो तुगयानहिम अपनी सरकशी में यानी हदों से बाहर निकलते हुए, या महून, वो भटक रहे हैं। या महून का रूट आप निकालिए, ऐन, मीम और हा, क्योंकि बाकी वाव नून किसकी अलामत है, और या जो है वो मुजक्कर गायब की, तो बाकी रह गया रूट पीछे। आसान है ना रूट निकालना, और रूट का जानने का मकसद क्या है, ताकि उसके रूट जैसा कोई और लफ्ज़ आ जाए तो आप फौरन गेस कर लें तर्जुमा। ये इसलिए पढ़ाया जा रहा है, इसको रटने के लिए नहीं पढ़ाया जा रहा। बाज़ लोग क्या करते हैं, वो अलग से रूट रटना शुरू कर दे, इट्स नॉट फॉर रटना, ये किस लिए है, समझना। क्या आप खुद गौर करें कि ये लफ्ज़ कितने हर्फ से मिलके बना, एनालाइज कर सकें आप उसको। उलाइका, ये वही हैं, ये वही लोग हैं। अल्लज़ीना, वो लोग। इश्तरबू, इश्तरबू इसका रूट है शीन, रा और या। शरा कहते हैं खरीदो फरोख करने को, एक्सचेंज करने को, कुछ दे के कुछ लेना। इश्तरबू, जिन्होंने खरीद ली। अद्दलालता, दलाल, दाद लाम लाम, दलाल कहते हैं गुमराही को। कहाँ पड़ा ये रूट पहले, दालीन, इन्होंने खरीद ली गुमराही। बिलहुदा, बदले हिदायत के। बे का तर्जुमा सबब या बदले कहाँ पड़ा पहले, बिमा कानू। अलहुदा, हिदायत, रहनुमाई। हिदायत कितनी किस्म की होती है, दो किस्म की, नंबर एक इल्मी और नंबर दो अमली। हिदायत इरशाद और तौफीक। फमा, तो ना, फा तो, मा ना, अब मा फिर ना के मानों में आ गया, जैसे मा हम बे मोमिनीन में आया। रबहत, फायदा मंद हुई। रबहा, रा बा हा, रबहत, रबह कहते हैं फायदे को। न फायदा मंद हुई तिजारत हम, उनकी तिजारत, न फायदा दिया उनकी तिजारत ने। तिजारत क्या होती, लेन देन करना, बिजनेस। इसका रूट क्या है, ता जीम रा, ताजिर भी इसी से निकला। और हम का लफ्ज़ आप देखिए कितनी दफ़ा आया ना, और तिजारत उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, नथिंग न्यू। वा और मा नहीं, कानू, वो थे मुहतदीन, हिदायत पाने वाले। मुहतदीन का रूट क्या है, हा दाल या, हिदायत पाने वाले नहीं थे। चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत अल-फातिहा में हमने तीन किस्म के लोगों का हाल पढ़ा था। नंबर एक, अनामता अलैहिम, जिन पर अल्लाह ने इनाम किया। सूरत अल-बकरा में उसकी डिटेल हमने पढ़ी, वो कौन है, मुत्तकीन। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल्मुत्तकीन, कौन है मुत्तकीन, जिनकी सिफात आगाज में हम पढ़ चुके हैं। इनाम याफ्ता लोग वो हैं जिनके पास इल्म भी है और अमल भी है। दूसरा ग्रोह उन लोगों का था जो कौन थे, मग़दूब अलैहिम। सूरत अल-फातिहा में दूसरे किस्म के लोग कौन थे, मग़दूब अलैहिम, जिन पर अल्लाह का गज़ब हुआ। ये कौन लोग थे, जिनके पास इल्म तो था लेकिन अमल नहीं था। सूरत अल-बकरा में हमने उनकी डिटेल पढ़ी और दूसरे ग्रुप के बारे में पढ़ा, और वो कौन थे, इन्नल्लज़ीना कफरू। कुफ्र किसको कहते हैं, छुपाने को, यानी किसी चीज़ को जानना और जानने के बाद उसको छुपा देना। तो ये क्या है, दरअसल मालूम हो जाना लेकिन उसको कबूल ना करना, उस पर अमल न करना। तीसरी किस्म के लोग वो हैं, अद्दालीन, भटके हुए, जिनके पास हिदायत नहीं, ना इल्म है ना अमल है। और बाज़ औक़ात इल्म होता है लेकिन अमल की तौफीक नहीं होती, यानी हिदायत इल्मी तो होती है लेकिन अमली नहीं होती, तो वहाँ पर वो क्या होते हैं, भटक जाते हैं, रास्ता खो देते हैं, और ऐसे लोग हिदायत नहीं पाते। आज की आखिरी आयत के आखिर में आप देखिए कि क्या लफ्ज़ आया है, मुहतदीन। वमा कानू मुहतदीन, और मुहतदीन किसका ऑपोजिट है, दालीन का। दालीन है रास्ता गुम करने वाले और मुहतदीन है रास्ता पाने वाले। और यहाँ पर क्या कह दिया गया, वमा कानू मुहतदीन, ये भटकते ही रहेंगे, ये रास्ता नहीं पाएंगे। तो आज हम तीसरे ग्रोह की तफसील पढ़ेंगे। कुरान पाक का ये एक उसलूब है कि अल्लाह सुबहानु ताला इंसानों को समझाने के लिए बात को बहुत मुनज्जम अंदाज में करते हैं, तकसीम करके और मिसालों से वाज़े करते हैं। यहाँ पर हम
1: आज तीसरे ग्रोह की बात पढ़ेंगे। पहला ग्रोह जो खालिस मोमिन, दूसरा ग्रोह खालिस काफिर, और तीसरा ग्रोह जो ना मोमिन और ना काफिर बल्कि उन दोनों के बीच में। सूरत अन्निसा आयत 143 में आता है, मुज़ब्ज़बीन बैन ज़ालिका ला इला हाउलाई वला इला हाउलाई। दोनों के बीच में तज़ब्ज़ब का शिकार है, मुज़ब्ज़ब है, डावा डोल है, ना इधर है ना उधर है, ना मानने वाले हैं और ना ना मानने वाले, कहते कुछ है करते कुछ है। ऐसे लोगों को क्या कहते हैं? मुनाफिक। जिस तरह मुत्तकीन की कुछ अलामत थी, इसी तरह मुनाफिकीन की भी कुछ अलामत है। मुत्तकी किससे पहचाने जाते हैं? नंबर एक, गौर कीजिए, ईमान से। नंबर दो, इकामत सलात से। नंबर तीन, इन्फाक फी सबीलिल्लाह से। और आखरत पर ईमान से। ये किसकी अलामतें हैं? मुत्तकीन की। और हिदायत किसके लिए है? मुत्तकीन के लिए। अब यहाँ पर ऐसे लोगों का जिक्र है जिनके लिए हिदायत नहीं, उनकी भी कुछ अलामात हैं, उनके भी कुछ साइंस हैं, उनके भी कुछ ट्रेट्स हैं, कुछ तरीके हैं। तो आइए देखते हैं कि उनके क्या तरीके हैं। और इन तीन ग्रुप्स के बारे में पढ़कर हमें अपने बारे में सोचना चाहिए कि हमारे अंदर कौन सी अलामात नुमायाँ, हम किस ग्रोह में शामिल होते हैं, हमारे अंदर क्या क्या खूबियां हैं, क्या मुत्तकीन वाली सिफात हैं हमारे अंदर या फिर खुदा न खास्ता किसी और जैसी। आइए डिटेल देखते हैं, और फिर जब ये आयात पढ़ रहे हो हम तो किसी और के बारे में नहीं सोचें, अपना ही मुहासबा करें, क्योंकि इंसान अपने आप को ज़्यादा बेहतर समझता है। लेकिन अमूमन हम अपने बारे में सोचने की बजाय दूसरों ही की खामियां ढूंढते रहते हैं। तो चलिए ज़रा डिटेल देखते हैं। वमिनन नासी, और लोगों में से बाज, ना मुत्तकी कहा गया ना काफिर, बल्कि इनका नाम लिए बगैर जनरली बात की गई कि अब इनको अलामतों से पहचानो। लोगों में से बाज, मन जो, यकूलु कहते हैं, क्या कहते हैं? आमन्ना, हम ईमान लाए, बिल्लाही अल्लाह पर, यानी जबान से कहते हैं। कौल किससे होता? जबान से। जबान से कहते हैं कि हम अल्लाह पर ईमान लाए। वह बिल यौमिल आखिरी, और यौम आखिरत पर भी ईमान लाए। हम अल्लाह को भी मानते हैं, आखिरत को भी मानते हैं, वो कहते हैं, जबान से इकरार करते हैं। लेकिन अल्लाह सुभान व तआला क्या फरमाते हैं? वाह, हालांकि माँ नहीं हम वो, बिमुमिनीन, ईमान लाने वाले। किससे? दिल से। वो दिल से ईमान लाने वाले नहीं हैं, क्योंकि जब तक किसी का दिल मोमिन नहीं, वो मोमिन नहीं। जबान से कह भी दिया ला इला, तो क्या हासिल? दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। जबान से कह भी दिया ला इला, तो क्या हासिल? यही बात यहाँ कही गई है कि वो जबान से कहते हैं कि हम ईमान वाले हैं। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।
2: अस्सलामु अलैकुम। मज़ीद मालूमाती तालीम व तरबियत पर मबनी सीरीज और लेक्चर्स के लिए समात फरमाते रहिए इंस्पायर FM।
3: Coming up next, English Talk Series. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM.
4: Bismillah. قال النبي صلى الله عليه وسلم, الدعاء مخ العبادة. The supplication is the essence of worship.
5: had an accident, a bump, trip or fall, then you need Claims Specialists, your first choice for accident claims, the specialist claims company on Dunstable Road in Luton. With excellent access to expert solicitors and on a no-win, no-fee basis, Claims Specialists use their 30 years experience to help get you the best compensation possible. For injuries at work, taxi, PCO and private hire incidents, road accidents and vehicle damage, medical negligence, plus rented housing disrepair. In short, when you need to make any claim, click on claimspecialists.co.uk or call 01582 733 222.
6: AK Windows South Limited, manufacturers and installers of high-quality UPVC windows and doors, bifold doors, composite doors, conservatories, porches, skypods, fascias, guttering, and much, much more. We specialise in double glazing and triple glazing using the best German profile. If you want quality at affordable prices, AK Windows is the place to go. If your house needs a facelift, you know who to trust. For a free quote, call AK Windows today on 01582 483 777 or visit us at Unit 10 E, Britannia Estate, Leegrave Road, Luton.
7: Gems and jewels. Wise sayings, interesting events, and moral lessons from Islamic history. What is the matter with you when a single disaster smites you? Although you smote your enemies with one twice as great, you say, "From where does this come to us?" Say to them, "It is from yourselves because of your evil deeds, and Allah has power over all things."
8: Enjoy quality and tasty 100% authentic halal Chinese and Thai food from Gao Express, brought to you by the team behind Topps Pizza in Luton. Choose from all your delicious Chinese and Thai favourites, then order for delivery or collection from Gao Express in Wellington Street, Luton, Marketplace Stevenage, and now also on Nightingale Road in Hitchin. Open daily midday till late. Find the number or order online at Gao, that's G-A-O, express.co.uk, or like Gao Express on Facebook.
9: Do you want your sadaqa to become a source of healing? Kashmir Orphan Relief Trust, that's CORT, has supported thousands of orphan children across Kashmir and Pakistan for the past 20 years. Now, CORT's helping to revolutionise healthcare with a 250-bed facility in Mirpur. For this essential mission, CORT needs your support to succeed. To donate, please call 0300 123 7774 or visit kort.org.uk.
10: Oh, Hillary, I was going to use newspaper display advertising.
11: But
10: it costs £10 per inch.
11: And that's too expensive.
10: Oh, indeed it is. I want to sell a 10-foot ladder.
11: Oh, Roger, invest in an ear-catching advertising campaign on this radio station instead. It's a great way to tell people about your products and service.
12: For details, click on inspirefm.org, then advertise.
13: From the studios of Inspire FM, the time is now 11 o'clock.
14: Catch a creative vibe on the Urban Cube with Sister Shamiza.
15: 105.1 FM. It's an absolute pleasure to be in your company this morning, and I hope you've had a great weekend and are having a fabulous start to the week. As always, Monday is all about creative conversations with trailblazing individuals and organizations, and today's show is no exception. I want to also remind you guys, we are going out to the wonderful people, Luton surrounding areas, Peterborough Salaam Radio and Sheffield's Link FM. And we are also Facebook Live. So you can catch all the action on the Inspire FM Facebook page. Any questions that you want to ask, then feel free to do so. Leave your comments, your thoughts, just even say hello to us on the Facebook Live. We're also WhatsApp ready too with you guys. It's 07779481822. Today's show, which the show that you're listening to, is the Urban Cube, and we're going all the way up to 11 o'clock. And on today's show, we're talking about connecting our communities through grassroots projects and exploring why local community-led initiatives are so important in bringing people together. And today I'm delighted to be joined by somebody all kind of familiar with. She's like part of the furniture of Inspire FM. We're joined by no other than Laura Conder. Now, we're going to be hearing a different side to Laura because she is a former presenter of the radio station, and she's not going away too far. She's going to be coming back on many a show, but today